मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी

0: समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the program. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and the IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennathalia and V.D. Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Defence Research and Development Organisation DRDO has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures for the labour codes. The Ministry of Labour and Employment said the reforms aim to ensure timely payment of wages, mandatory remittance of social security contributions, greater accountability of contractors and principal employers, and stronger enforcement mechanisms against violations of labour laws. The US has proposed to increase the minimum wages paid to hire an employee under the H-1B visa program by 30% over the previously fixed limits, a move the administration claims will help prevent foreigners from undercutting salary of US nationals. India's under 15 girls delivered commanding performances in the semi-finals at the Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships, with 9 boxers advancing to the finals across weight categories in Tashkent yesterday. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur last night. Today, Chennai Super Kings and Lucknow Super Giants will clash at M.A. Chidambaram Stadium. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम, आगाज समूह स्वर में मातृवंदना के साथ।

अभी आप सुन रहे थे अनुप जलोटा और साथी का गाया भजन, रचना थी पंडित किरण मिश्रा की। अब सुनिए अनुप जलोटा के ही स्वर में पंडित किरण मिश्रा का लिखा एक और भजन।

0: सुप्रभातम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। पेश है कृषि संकेत।
1: किसान भाई लोग, माल मवेशी में कई अक मेर की बिरामी होती है और जो बिरामी की जूना राहत उपचार न कीनगाता मवेशी दुर्घटना के शिकार घलाए हो जाती। जैसन देखी एंथ्रेक्स बीमारी। एंथ्रेक्स बीमारी का गाँव में पिलबढ़ या जहरीली बुखार कहा थी, जौन पशुओं में हो जाती या एठ जीवाणु द्वारा फैलने वाली विशेषकर पागुर करे वाले पशुओं में बहुत भयानक रोग है। एकर प्रकोप गर्मी में होत है। तराई और दलदल वाले स्थान में इनकर जीवाणु कई बरिस तक जीवित रह सका थी। यह बिरामी कौने जीवाणु के कारण होती वह जीवाणु या मेर के ही बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु या रोग का फैलावा थे। यह रोग के कुछ लक्षण होती जौन या मेर के होती। यह बीमारी के तीन अवस्था होती, पहल अति तीव्र अवस्था, दूसर तीव्र अवस्था और कुछ तीव्र अवस्था। अति तीव्र अवस्था, यह अवस्था में कपकपाए के धड़ाक से पशु भूमि में गिर जाती, तेज तेज सांस ले लागत थी, जही हम पंची पलई चलब घलाए कही थी, मुंह नाक तथा मलाशय में मिला झाग धार कचरा गिरने लागत है और कुछ ही देर बाद पशुअन के मृत्यु हो जाती। तीव्र अवस्था की पहचान या में से कीन जाती, बहुत बेचैनी, गोड़ के लड़खड़ाव और 106 डिग्री सेल्सियस से तेज बुखार रहा था। तेज से सांस ले मतलब कहा कि सांस की गति जानी तो तेज तेज हो जाती, चक्कर काटना, शरीर में थोड़ थोड़ भागन में पसीना आओ, कसकन वाला तेज दर्द होता है, खून मिला दस्त होने के रोग ग्रसित पशुओं के 24 से 48 घंटा में मौत हो जाती। शरीर के प्राकृतिक छिद्रन से काला चकत्थादार फेन कस फेंकुर निकलने लागत है, जो फेंकुर निकला था वो जमे नहीं। इन्हें मौत एकाएक नहीं हो, कुछ पशुओं में मुंह और जीव में छाला घलाए दिखाने लागत थी और मुंह के ललोतर ललोतर लार मुंह से बहाने लागत है। तीव्र अवस्था में होने वाले लक्षण या मेर के हैं। यह लगभग तीव्र अवस्था के सब लक्षण कुछ हल्के पन में विद्यमान रहा थी। एमा 2 से 6 दिन तक पशुओं में मौत हो जाती, मृत्यु के बाद शरीर फूल जात है और त्वचा सड़ जाती, थूथुन और मलाशय में झागदार खून बहने लागत है। पर एकर उपचार है, सबसे बड़ी बात यह आए कि एकर कौनो विशेष इलाज नहीं आए। नियरे के पशु चिकित्सकन का सूचना देने का चाहिए। यह बीमारी के रोकथाम खातिर मई जून के महीना में टीका लगाए जाती, टीका लगवाना के चाहिए। पहले टीका 6 महीना में और एक के बाद हर बरिस मई जून में लगवाए जाए का चाहिए। और कई अठे बिरामी पशुओं में हो जाती है, जेही मुंह पका और खुर पका बीमारी कहा थी। यह बहुत जल्दी फैलने वाला जहरीला संक्रामक रोग है। यह रोग गाय भैंस बकरी और सुअरन में फैला थे। पशुओं में मृत्यु दर न के बराबर होती, पर जो कौनो पशुओं का यह रोग होगा तब बहुत कमजोर निर्बल हो जाती, जेके कारण उनकर उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती। रोग से ग्रसित गर्भित गैया भैंसी के बच्चा मादा के शरीर में अधिक जर्जर हो गए के कारण पेटिन में मर जाती। यह बिरामी के कई अठे लक्षण होबा करा थी। पशुओं का जाड़ दई के बुखार आवा थी। पशुओं के तापक्रम 104 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस और कभी कभी तो ऐसे अधिक हो जाते है। तो देखिए यम के रोगन से पशुओं का बचाव करे का चाहिए, जूना राहत इनखर उपचार करने का चाहिए। अपने नियरे के जौन चिकित्सक है उनके लगे ले जाए के इनखर सही सलाह ले और सही उपचार करा में जौन हमारा पशु स्वस्थ रह सके।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था पशुओं में एंथ्रेक्स रोग। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, गायक स्वर महेंद्र कपूर का था। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। लीजिए सुनिए विवरण आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम आज सवेरे सुबह 7:30 पर। सिंधी कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी सुबह 10:00। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 7:20 पर और 8:30 पर। महफिल गजल गजलों पर आधारित इस सुगम संगीत का समय रहेगा सुबह 10:05 पर। चौपाल पर चलेंगे शाम 7:21 पर, जिसमें आप सुनेंगे बदकहाओं बघेली पॉडकास्ट के अंतर्गत शशि बहिनी की शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह से बातचीत। विषय होगा लू से बच्चों की सुरक्षा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम इस

0: एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: न्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां सप्तषष्ट्यधिक शत संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमंत्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्च मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नव मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुंता स्थले अद्य रजत जयंती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचंड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+ धावनांकानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में

0: अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m, the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory.

0: केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर, कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में 1189 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीहोर जिले के भिरंगना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज होगा शुभारंभ। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ दो दिन पहले हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक कहलाता है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के

0: जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर भी होंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर गुडबेल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को फोर लेन बनाए जाने के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। वे इसी दौरान वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत विकसित इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ यादव यहां 1059 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाले अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इन विकास कार्यों से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य गुना जिले में औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कल इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो जत्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मालवा उत्सव में भी शामिल हुए।
2: मेला मेल मिलाप की जगह होती है, परस्पर आत्मीयता बढ़ाने की जगह होती है कि हमारे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कलाकार इस मालवा उत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए आत्मीयता बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए रजत जयंती वर्ष में धूमधाम के साथ ये आयोजन हो रहा है और 125वीं जयंती में हम सब मिले इस कामना के साथ मैं अपनी ओर से 5 लाख रुपया हमारे इस आयोजन के लिए संस्था को देने की घोषणा भी करते हैं।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों के जरिए समय पर वेतन भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक भी कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। अब समाचारों का वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के बरुंदा में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत प्रदेश में 1763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2117 किलोमीटर लंबी 963 सड़कों का निर्माण होगा। योजना में सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण होना है। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे लाभान्वित होंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ है। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से कहीं अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर पहुंच गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक कर दिया गया है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में सक्रिय चक्रवात के कारण कल राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आंधी और बारिश देखने को मिली। इससे तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 रनों पर सिमट गई। आज के मुकाबले में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। वहीं रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैतूल कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने कल समीक्षा बैठक की। इसमें जल संचय, जन भागीदारी और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की गई। डिंडोरी जिले में कल पोषण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर के विभिन्न इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा की गई। जयपुर जिले में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में हीट स्ट्रोक से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना है। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। आगे दीजिए, नमस्कार।

0: मैं तुलसी तेरी आंगन की। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने व धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, सिर्फ क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रहे तेरी समझदारी का फल।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।

0: नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: माँ एक ऐसा शब्द जिसके लेते ही दिल में सुकून भर जाता है। ये वो निस्वार्थ शक्ति है जो जन्म देती है, रक्षा करती है और पालन पोषण करती है, लेकिन बदले में सिर्फ हमारी खुशियाँ चाहती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आज सवेरे के इस अंक में आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं इस मौके पर सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
1: नमस्कार फरहत, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई जस्ट लाइक टू एड हियर दैट आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर। फरहत, दीज लाइन्स सो ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड। एंड लिसनर्स, नॉट ओनली टुडे, लेट्स सेलिब्रेट दिस रिलेशनशिप एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस।
0: जी बिल्कुल सरबजीत, क्योंकि जो माँ है ना वो हर उम्र में चाहिए होती है, चाहे आप जवानी के उस पड़ाव पर हो या फिर बुढ़ापे के उस पड़ाव में, लेकिन माँ जो है वो हर वक्त हमें चाहिए होती।
1: Absolutely, very well said.
0: जी बिल्कुल, और फिल्मों में भी हमेशा माँ के किरदार को अहमियत दी गई है, तो क्यों ना फिल्म कुछ कुछ होता है से ये सीन सुनते हैं जहाँ शाहरुख खान माँ के किरदार को बखूबी बयां कर रहे हैं।
2: माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है।
0: बिल्कुल, माँ सब कुछ है सरबजीत।
1: Yes, and with these words, once again, listeners, a very warm and loving welcome to all our listeners tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani Network. Yes, listeners, it's time for our daily news magazine program, Aaj Savere. This is a program of 30 minutes, a program packed with important news.

0: news, Metro City updates, historical information, and of course, towards the end of the program, we shall together discuss and share with you information about important personalities associated with today's day, that is 10th of May.
1: जी बिल्कुल सरबजीत, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का वहां पर भी शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।
0: The founder of Tamil Nadu Vetri Kazhagam TVK C. Joseph Vijay will be sworn in today as the Chief Minister of the state. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indore Stadium at 10 a.m. today. State Governor Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event in Chennai. We have more details on this from our correspondent.
2: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Tirpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
1: और तमिलनाडु के बाद केरलम की बात कर लेते हैं। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरल प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा। जल्द ही नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए ने 9 अप्रैल को हुए चुनाव में बहुमत हासिल किया है। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए गए थे।
0: एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स फरहत, see what the great leaps the country is taking in the area of defense and research. Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defense said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. Defense Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, industry partners and academia and described the achievement as a solid foundation for the nation's hypersonic cruise missile development program. The ministry said that the combustor is developed by Defence Research and Development Laboratory, DRDL, of DRDO, with support from industry partners. It added that the combustor uses an indigenously developed liquid hydrocarbon fuel, advanced thermal barrier coating and modern manufacturing technologies.
1: और सरबजीत, अब बात कर लेते हैं संविदा कर्मचारियों से जुड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान करना, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान भी है। इसके अलावा दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में होना अनिवार्य कर दिया गया है।
0: And let's now take a look in the world of sports. In boxing, India's under 15 girls delivered commanding performances in the semi-finals at the Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships, with 9 boxers advancing to the finals across weight categories in Tashkent. In the 30 to 33 kilograms category, Akshita registered an emphatic win by RSC referee stops contest against Aizan Marat of Kazakhstan. Anze, 37 kg, continued India's strong run with a convincing 5-0 victory over Sarvinoz Risklova of Uzbekistan, while Sonia, 40 kg, was secured a dominant 5-0 win against Diana Mendgreva of Kazakhstan. In the 43 kg category, Tanvi clinched a win by RSC against Sezem Nulbuk of Kazakhstan. Hanshika Atri, 46 kg, followed it up with an impressive RSC victory over Yunoi Shion of Korea. Sunena, 58 kg, delivered a strong performance, winning by RSC against Ardak Arzbegan of Kazakhstan. In the 61 kg category, Bhumika secured a win by RSC against Xiaoying Sheng of Chinese Taipei. Tanvi, 64 kg, registered a hard-fought 4-1 victory over Yasmin Jotunov of Kazakhstan to progress to the finals. With 9 finalists confirmed, the Indian under 15 girls team will now look to convert this strong showing into gold medals.
1: और श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचार हम सुनेंगे। तो सरबजीत, चेन्नई में क्या है खास?
0: Yes, Farhat, around 48,250 hatchlings have been released into the sea by the state forest officials so far this season, which will conclude by month end. At least 74,140 eggs were collected from nests and transferred to hatcheries this time. Tamil Nadu recorded 1,985 Olive Ridley nests across 9 coastal hatchery districts. Chennai had the maximum number of nest identification, egg collection and hatchling releases. Chennai also recorded the highest number of turtle deaths this season. The district's jurisdiction extends to Pulkat in the neighbouring Tiruvallur district. And Farhad, what are you having to share with the listeners now?
1: जी, दिल्ली में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं CBSE से जुड़ी खबर से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिल्ली में प्रोजेक्ट मैट के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ये पहल किशोर विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 60 से अधिक CBSE स्कूल भी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास हीट वेव एक्शन प्लान के अंतर्गत विशेष कूलिंग जोन तैयार किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यहां 70 से 80 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं ठंडे पानी और ORS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि राहगीरों, पर्यटकों, रिक्शा चालकों और श्रमिकों को गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लोगों तक सीधी राहत पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को भीड़भाड़ वाले अन्य इलाकों में ऐसे राहत केंद्र विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं।
0: Yes, of course, you know, with summers round the corner, Farhat, we all need to take a lot of care of our health and of course at all time remain hydrated. Moving on to news from Bengaluru, Karnataka State Election Commission is likely to announce next week the schedule of elections to the 5 city corporations under the Greater Bengaluru Authority. The State Election Commissioner, G.S. Sangreshi, has informed that the poll dates will be announced following consultations with the officials of the Greater Bengaluru Authority and also considering engagements related to examinations, census work, voter list revision and monsoon conditions. The Supreme Supreme Court has directed the Karnataka state government to complete Bengaluru civic body elections before June the 30th. The term of the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike, as it was called earlier, has ended way back in 2020. The civic body since then is administered by a government-appointed administrator. The state government had last year replaced Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike with Greater Bengaluru Authority and bifurcated the single municipal corporation into five separate corporations.
1: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक ने कहा है कि राज्य वन विभाग ठाणे जिला आर्द्रभूमि निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती देगा, जिसमें कथित तौर पर नवी मुंबई और ठाणे के कई पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को आर्द्रभूमि का दर्जा देने से इनकार किया गया है. इस रिपोर्ट ने पर्यावरणविदों के बीच चिंता पैदा कर दी है, और क्योंकि इसमें नवी मुंबई में राजहंसों के आवासों और जल निकायों सहित महत्वपूर्ण स्थलों की आर्द्रभूमि स्थिति पर सवाल उठाया गया है. वहीं भगवत सप्ताह उत्सव के उपलक्ष्य में 9 से 12 मई तक उल्हास नगर के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू किए गए हैं. ठाणे पुलिस के अनुसार श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और जाम से बचने के लिए कई सड़कों पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. मलेगा मंदिर, आकाश कॉलोनी रोड और चालिया मंदिर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग निर्धारित समय के दौरान सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाएगा. पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहनों सहित आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को भी इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है.
0: And now news from Hyderabad. Chief Minister A. Revanth Reddy announced plans to make Hyderabad a traffic-free city. The state government will build underpasses, surface roads and elevated corridors to improve traffic flow. Chief Minister addressed the Parliamentary Standing Committee on Urban Affairs and Housing, presenting the government's plans to make Hyderabad a traffic-free city and rejuvenate the Musi River. Multi-level parking facilities and multi-mode transport systems will be developed across the city. The Chief Minister said that simply widening roads is not enough to manage traffic effectively. To reduce air pollution, electric buses will be added to the city's public transport. Auto rickshaws in the city centre will be converted to electric vehicles for free. The government is also rejuvenating the Musi River to preserve the city's natural beauty and culture. The Parliamentary Standing Committee praised the Chief Minister for the Musi River rejuvenation project. The committee said it is the first project of its kind in India.
1: और सरबजीत, अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं. अनुकूल हवा और उच्च आर्द्रता के कारण रविवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है. अलीपुर मौसम विभाग ने झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. और इसके अलावा उत्तरी बंगाल के मालदा और दक्षिण दिनाजपुर के लिए मध्यम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी की गई है. मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि अगले 2 दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं सरबजीत. तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज आसमान साफ रहेगा लेकिन गर्मी वैसे ही बरकरार रहेगी. अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है. न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. और कोलकाता में हमने आपको बता ही दिया है समाचारों में कि आज बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना वहां पर व्यक्त की गई है. न्यूनतम तापमान में गिरावट महसूस होगी, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
0: सो फरहत, सो इंटरेस्टिंग. आवर कंट्री इज नॉट ओनली डाइवर्स इन इट्स कल्चर बट ऑल्सो इन इट्स वेदर कंडीशंस. कहीं बहुत गर्मी हो रही है और कहीं बारिश की संभावना है. जी, वेल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस थंडरस्टॉर्म अकंपनीड विद लाइटनिंग. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum may go up to 32 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The temperatures will hover between minimum of 27 degrees and a maximum of around 38 degrees Celsius.
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. आज है 10 मई 2000 26 तो सबसे पहले इतिहास में दर्ज 1857 की बात कर लेते हैं जहां पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन शुरू हुआ था।
0: Yes, Farhat very rightly said on May 10th, 1857, sepoys at Meerut began their revolt, igniting a conflict that spread across northern India and would influence Indian politics for decades. The 1857 rebellion or first war of Indian independence was a major large-scale uprising against British East India Company rule that began today in the year 1857 in Meerut and spread across north central India. And sparked by the use of greased cartridges, it stemmed from deep-rooted political, economic and social grievances. On this day in the year 1872, Victoria Woodhull became the first woman nominated for President of the United States. And on this day in the year 1877, the 19th US President Rutherford Hayes got the first telephone installed in the White House.
1: और 1994 की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई। वहीं 1999 में पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम की आज ही के दिन मृत्यु हुई।
0: And 1893, on this day, the Imperial Institute building was officially opened by Queen Victoria. And on this day, in the year 1901, Sir Jagdish Chandra Bose, the Indian scientist, in the hall of the Royal Society, London, which was packed with eminent scientists, proved that plants and animals have similar touch sense.
1: और सन 2006 में अगर बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित ऑस्कर एरियोस ने दोबारा कस्टोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी।
0: On this day in the year 1975, the first home video cassette recorder, the Betamax, began sales in Japan. The format made by Sony used one-hour tapes, but a competing system was introduced by JVC the following year called Video Home System. Capable of two-hour recording.
1: और अब आइए इतिहास के बाद हम याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंकज मलिक की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ रहे। इनका पूरा नाम था पंकज कुमार मलिक और ये ऐसे संगीतकार और गायक थे जिनकी आवाज के जादू ने आज भी उनके लाखों प्रशंसकों को बांध रखा है। जाति प्रथा की समस्या के खिलाफ संदेश देने वाली फिल्म डॉक्टर में पंकज मलिक ने कई गाने खुद गाए जो काफी हिट भी हुए। पंकज मलिक की अपनी विशिष्ट गायन शैली थी जिसकी बदौलत उन्होंने हजारों लोगों को अपना प्रशंसक बनाया। उन्हें हिंदी फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जी हाँ, ये फिल्म है अर्थ और इसके बोल लिखे थे कैफी आजमी ने। तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये उर्दू अदब का वो सितारा रहे जिसने इश्क, इंकलाब और इंसानियत तीनों को लफ्ज दिए। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने नज्म लिखी और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शायरी को इन्होंने जन्म दिया। और कैफी आजमी साहब को पहला ब्रेक मिला था 1959 में फिल्म कागज के फूल में। अबरार अलवी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया और गुरुदत्त से बहुत जल्दी उनकी अच्छी बन गई थी। कैफी आजमी साहब कहते थे कि उस जमाने में फिल्मों में गाने लिखना एक अजीब सी चीज थी और आमतौर पर पहली ट्यून बनती थी और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने जब कागज के फूल में जो गीत लिखा वो तो मशहूर हो गया, लेकिन फिल्म जो थी वो ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन हम आपको इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

लेकिन इसके बाद भी कैफी आज़मी ने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने गीत लिखे और इसके अलावा कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, ये गाना इन्होंने जब लिखा तो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। तो फिल्म हकीकत से सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ने दिया।
1: और इसके बाद कैफी साहब का कामयाब का दौर शुरू हो गया। चेतन आनंद साहब की तमाम फिल्में वो लिखने लगे जिसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुए और उनका कहना रहा कि जो वो मेरे ना रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा।
0: अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
2: और फरत, एज इज यू नो इन एवरी शो आपकी आवाज में आज भी बहुत ताजगी। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड योर मॉर्निंग कप ऑफ टी।
1: जी बिल्कुल, हमेशा जो है वो कहते हैं ना कि वो खुशी का जो पल है वो याद करते रहना चाहिए, तभी आपकी जो आवाज है उसमें भी खुशियां महसूस होती रहेंगी।
2: एब्सोल्युटली। एंड यू नो व्हाई आई मेड दिस स्पेशल रेफरेंस टू योर मॉर्निंग कप ऑफ टी, बिकॉज टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर थॉमस लिप्टन, द ओनर ऑफ the brand of Lipton teas. And before he made it big in life, he did a variety of jobs. Lipton worked for a tobacco plantation in Virginia. He worked as an accountant and bookkeeper at a rice plantation in South Carolina and as a door-to-door salesman in New Orleans. You know, his life mm-hmm. was struggleful, but at the end of the day, he finally brings this brand mm-hmm. to the world called Bilkul. The Lipton teas. And Sir Thomas Lipton boasted that his secret for success was selling the best goods at the cheapest prices, harnessing the power of advertising, and it said that he was a very very optimistic personality.
1: बिल्कुल, उनकी मेहनत जो है लोगों को ताजगी का एहसास आज भी करवा रही है।
2: Absolutely. Listeners, today is also the birth anniversary of Rameshwar Nath Kau, an Indian bureaucrat, police officer, intelligence officer, and he was the founder of the RAW, the Research and Analysis Wing. He was the founding father, in fact, of RAW.
1: और सुरभ जी चलिए आइए बात फिल्म शोले से सांभा को याद कर लेते हैं।
3: अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
1: पूरे पचास हजार। पूरी फिल्म में एक बहुत छोटा सा इनका किरदार था, लेकिन ये इतना फेमस हो गया कि आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। इनका असली नाम था मैक मोहन, और मैक मोहन जैसा कि हमने बताया कि रवीना टंडन के मामा भी थे, इनके बारे में ये कहा जाता है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए कई मैच भी खेले, और फिल्म शोले हमने आपको सुना ही दिया इनका ये डायलॉग, तो जिन्होंने घर घर तक पहचान दिलाई।
2: We are also remembering today, listeners, Tara Chand Barjatya on his birth anniversary, a film producer, and he founded Rajshree Productions, which continues to produce films even today. We have this beautiful number from one of the movies produced by Tara Chand Barjatya.

अंत में चलते चलते भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा को याद कर लेते हैं। आज संतूर की लोकप्रियता का सर्वाधिक श्रेय शिव कुमार शर्मा को ही जाता है।

0: तो बहुत ही मधुर आवाज संतूर की। और इसके साथ ही वक्त चला है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
1: Listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, followed by Morning News in English. Thank you for tuning in. Have a great day. Namaskar.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
2: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत

0: पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद आदि ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
8: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियुक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
9: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
11: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता सिलसिला समाप्त। अभिनेता से राजनेता, टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल, पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी, पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कमस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
13: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
12: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167, from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, nine ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
14: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Tirpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
12: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as chief minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
15: With the approval of the President, Dexa cleared for the swearing-in ceremony of N. Rangasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rangasamy is set to assume office for a record fifth term after the ANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the Assembly elections. 76-year-old N. Rangasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NL Congress, he served as Chief Minister from 2011 to 2016 and later headed the ANRC-BJP Alliance government from 2021 to 2026. In the recently held assembly elections, Mr. Rangasamy was elected from both the Thattanchavadi and Mangalam constituencies. In the 30-member assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Vibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
12: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
4: The BJP Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Nayab Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Acharya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District Administration has also issued a set of traffic regulations in the city for the day. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the swearing-in ceremony. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
12: The top brass of the Congress Party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, Party General Secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary Organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and VD Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the Labour Codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

अगले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं किस्मत फिल्म से लिया गया गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं नूर देवासी और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

यादों की बारात। अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी का है। मजरूह की रचना की धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने।

आशिक, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। युगल स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक का था। समीर की रचना की धुन तैयार की थी संजीव दर्शन ने। अगली पेशकश फिल्म साथ साथ से, युगल स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और सुरों से सजाया है कुलदीप सिंह ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी का गीत। स्वर कुमार सानू का है। गीत रचना एक बार फिर जावेद अख्तर की है व संगीत संयोजन किया है आर डी बर्मन ने।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

सॉरी कार्यक्रम का समापन करते हैं इस फिल्म के गीत के साथ। स्वर एक बार फिर लता मंगेशकर का है, जान निसार अख्तर की रचना की तर्ज बनाई है खयाम ने। फूलों पर

गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सिंधी कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: है धन्यवाद देने जो है खास दिया है। माउ जी ममता जी अमूल खजाने में पंज बार में प्यारे जा जी के मुंह निकलना है उन्हें जी कीमत कहे भेटा सुखड़े या गिफ्ट के रूप में चुका सकती कोने पर हुन अनमोल प्यारे जी लाए जब ये लफ्ज घट थी वने तो पंजी भावनाओं के गिफ्ट ये सुखड़े जो रूप दे माउ जो सम्मान करण जो यो दिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वही सदी की शुरुआत खा वठी यो दिन मनाया अन्ना जर्विस जी पहल हुई हुन वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन शहर में एंड्रयूज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में पहरो भेरो माता जी पूजा ए उत्सव जी तैयारी कई। तदे खां पोए हर साल मई जो बे आर्तवार मातृ दिवस यानी मदर्स डे के रूप में मल्हायो वेंदो आहे। बी गल कयूं त परिवार परिवार समाज जी एक अहिड़ी इकाई आहे जेका प्रेम सुरक्षा ए संस्कार ॾींदी आहे। परिवार में अलग अलग माण्हू जुदा जुदा जिम्मेदारियों में बधल हूंदा आहिनि। कम पढ़ाई नौकरी सामाजिक जवाबदारियों इन्हें सबनें कारणों सा परिवार से गड वही रिश्तन के मजबूत करण ए आधुनिक चुनौतियों ते चर्चा करण जो वक्त घटी बचंदो आहे। परिवार जो महत्व उन्हें जी सामाजिक आर्थिक ए सांस्कृतिक भूमिका लाए सुजागी आनण वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ पारा सन 1993 में 15 मई जो दिन परिवार दिन के रूप में मल्हायण मुकर्रर कयो वियो। तो विश्व परिवार दिन ए मदर्स डे जो अवां सभिनी खे खोड़ खोड़ वाधायूं शुभकामनाओं ए परिवार में मस्ती खिल रौनक तो जरूर होंदी आए। तो इन ही मौके ते अचो गॾिजी ॿुधूं था ही मस्ती भरो गीत गोवर्धन भारतीय जी रचना सी अर्जुन जो संगीत भगवंती मावाणी ए सतराम रोहिड़ा जी आवाज।
1: ऐ अमा
2: चल पुट मां सदके वञा है।
1: अमा मुखे शादी कराइण खां अॻु कुंवार बाबति का पुछा गछा भी कए।
2: ॾिस ॾिस पुट मुखे ॾो न ॾे। अरे छोकरी त तू पाणी पसंद करे आयो है न।
1: हा पसंद भी मूं कई शादी भी मूं कई ए शादी सा गड जेके बंद पेटीन में 20 गिनू ए 25 तोला सोन 16 साड़ी ए 50,000 रोकड़ वठी आसी।
2: मारा आस्ते गल है तो किथे इनकम टैक्स वारा न बुधन। अरे अगे ही असा पत्रा कढाया वा त देती लेती में असा पाई भी न वरती हुई सी।
1: आहा पाई भी कान वरती हुई सी उन हुंदे भी बंद पेटी वठी तो पान वट रखी साड़ियों पाए तू जेवर पाए तू रोकड़ रखे सड़ी पान वट अमा मूसा तो वेदन कई।
2: लाला तो सा कैड़ी वेदन किया है
1: अमा बुधाए।
2: हां हां एकदम चाहिए

सदी इन गीत खां पोए अज असा तहां के वठी ता हलूं वक्त जी हुनन गीतन में अहड़े सफर ते जते गाल थींदी फकत भारतीय प्रसारण जी पीण जी आधारशिला जी यानी आकाशवाणी जी साथियों असा तहां सा रूबरू थियूं ता तयो फकत एक रेडियो स्टेशन को ने पर लखे भारतीय माणन जी यादों समाचार खबरों एम मनोरंजन जो साथी आहे जिनके असा आकाशवाणी नाले से सुनो था उन्हें जी दास्तान 1920 में शुरू थी हुई जिन्हें बिजली भी हर घर कोन पोती हुई ए तकनीकी विकास भी अज जितरो कोन हो अहड़े समय में रेडियो यानी ट्रांजिस्टर्स पैंजो जादू दिखा रहे हो सन 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब पैंजो पहरी प्रसारण कयो हो 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बॉम्बे ए कलकत्ते में ब स्टेशन शुरू कया सन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने जी जरूरत ए महत्व समझियो ए पोए इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS जी शुरुआत कई गई यो एक प्रैक्टिकल कदम सन 1932 जी 8 जून ते मक्कम थियो ए ओ ऐतिहासिक दिन आयो जो ISBS जो नालो मटे ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखियो वियो बे विश्व युद्ध जे वक्त इन जो महत्व अञा वधी वियो ए 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी नालो दिनो वियो ईंदड़ 8 जून 2026 ते आकाशवाणी पंहिंजी प्रसारण सेवा जा 90 साल पूरा करे रही आहे अवां सभिनीनि प्यारे रेडियो श्रोताउनि जा असां लख थोरायता आहियूं जो तव्हां जे प्यार पसंदगी ऐं विश्वास आकाशवाणी जी प्रसारण सेवा खे इन मुक़ाम ते पहुचायो आहे ऐं हिन ॼाण खां पोइ अचो त गॾिजी ॿुधूं था हीअ लोली सी अर्जुन जो संगीत कृष्ण राही जी लिखियल बबंती नवाणी जी आवाज में EMI प्रोडक्शन जी पेशकश

0: भगवंती नावणिया जी आवाज में कृष्ण रहिए जी लिखेली लोली तहां बुधी रहे हो हिंगर पेश कर रहे हूं असा संत साई दादा चेलाराम जे जीवन एंजा महान विचारन ते एक खास वार्ता पेश कंदड़ा है श्री लोकचंद जनयाणी जी ही महान संत दादा चेलाराम साहेब उन्हें जो जन्म टीम ये ते थे वो गुरबाणी जो प्रचार प्रसार मानन में सेवा भाव जगान वारा ही संत उत्तम विचारन जा धनी हुआ अचो उन्हें जे जीवन यात्रा ए विचारन के वधिक विस्तार संबोधन था श्री लोकचंद जनयाणी जी जी आवाज में
1: दादा चेलाराम जन जो जन्म 3 मई 1904 में एक सिंधी परिवार में हैदराबाद सिंध में थियो संदन पिता जो नालो डॉक्टर टेकचंद राचूमल मनखाणी ए माता जो नालो चेतबाई हो संदन दे नंढी उम्र में ही माता पिता ए भेण इन फानी दुनिया मां चालाणो कयो जें करे संदन बालपन अकेलेपन में ए चिंतनशील थी गुजरियो उनन कानून जी डिग्री हासिल कई ए वकालत सां पंहिंजो जीवन जी शुरुआत कई पर संदन इन प्रोफेशन में मन न लगो पोइ उनन सिविल सेवा में पंहिंजो जीवन लगायो जिते उनन खे धार्मिक ग्रंथन के पढ़ण ए समझण लाइ बि टाइम मिलियो सिखन जे धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब संदन जे दिल ते वॾो असर विधो गुरुबाणीअ में उन्हनि खे रस अचणु लॻो ऐं प्रभुअ तरफ़ वधण लॻा सभ खां पहिरीं उन्हनि कराचीअ जे गुरुद्वारे में कीर्तन करणु शुरू कयो उन्हनि ॿारनि खे बि सेखारण पढ़ाइण जो कमु चालू कयो संदन कीर्तन करणु सभिनी खे वणण लॻो धीरे धीरे उन्हनि जे कीर्तन खे ॿुधण लाइ चङा माण्हू गॾु थियणु लॻा संदन खे ननकाणा साहिब ऐं अमृतसर गुरुद्वारे मां बि वक़्तु बे वक़्तु कीर्तन लाइ नींढ मिलण लॻी उन्हनि घणनि ई गुरुद्वारनि में कीर्तन कयो जंहिं सां संदन खे दादा जी उपाधी मिली इहा उपाधी पवित्र पुरुषनि या बुज़ुर्गनि खे ॾिनी वेंदी आहे उहे हिकु मशहूरु सहजदारी सिख हुआ जिन गुरबाणीअ जी अलॻि हर हंधि जॻाई सिर्फ़ 24 सालनि जी उमिरि में ई 1930 में उन्हनि गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद अरबी सिंधीअ में कयो हिन खां पहिरीं कॾहिं बि सिंधीअ में अनुवाद कोन कयो वियो हो 1938 में कराचीअ में दादा चेलाराम आश्रम जी स्थापना कई वई जिते ॿारनि खे गुरमुखी पढ़णु सेखारी वेंदी हुई ऐं साथ में ॿिए धर्म ग्रंथ ऐं संस्कारनि जी नींव बि विधी वेंदी हुई 1947 में देश जे विरहाङे खां पोइ दादा पूरे परिवार सां गॾु दिल्लीअ में अची पंहिंजो घर ठाहियो ऐं रक्षा मंत्रालय में नौकरी करे पंहिंजे परिवार खे पालण लॻा 1958 में दादा जन दिल्लीअ में हिकु धार्मिक केंद्र निज थाउ जी स्थापना कई जंहिंजो मतिलबु आहे पंहिंजो स्थान जिते गुरु ग्रंथ साहिब खां सवाइ ॿिए बि घणेई धार्मिक ग्रंथ जीअं त गीता बाइबल क़ुरान बि मौजूदु हुआ जिते बिना जात भेदभाव जे कोई बि अची अध्ययन करे सघंदो हो अॼु बि घणेई माण्हू इन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि दिल्लीअ में ई दादा जन निर्गुणा बालक सत्संग मंडल जी स्थापना कई पोइ इन जूं शाखाऊं मुंबई पुणे ऐं सोलन हिमाचल प्रदेश जे भरिसां सपरून में बि स्थापित कयूं वयूं सपरून 15 अप्रैल खां 15 सितंबर ताईं अचण वारनि लाइ खुलियल हूंदो आहे जिते हिन वक़्तु संदन सुपुत्र हरीश चेलाराम ट्रस्टी जे रूप में शेवा ॾेई रहिया आहिनि ऐं इन्हनि सभिनी सेंटरनि ते अॼु बि ज्ञान जी नदियूं वही रहियूं आहिनि ऐं घणेई जिज्ञासू वञी करे उते पंहिंजे पाण खे विकसित करण लाइ फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि दादा ज्ञान जा भंडार हुआ स्वभाव सां संयमी धार्मिक ऐं निस्वार्थ भावना सां भरपूर पाण खे हमेशा प्रभुअ जो निमाणो सेवक समझंदा हुआ दादा जन जे विचारनि सां हर इंसान के समान अधिकार मिलण खपन, जीअं त जीवन, स्वतंत्रता ऐं सुख जी खोज शामिल आहे। दादा जन चवंदा हुआ त असां सभई ईश्वर जा सेवक कयूं, सभिनी सां प्रेम कयूं। हू हर जन जन जे शेवा लाइ पंहिंजो पाण खे शामिल करे छॾींदा हुआ। हर माण्हूअ जे शेवा लाइ हू हमेशह अॻियां वधी करे शेवा कंदा हुआ। दादा गुरबाणी ज्ञान सां रची वसी विया हुआ। उन जे रोम रोम में गुरबाणी वसियल हुई। दादा जन इहो ई ज्ञान पंहिंजे परिवार खे बि ॾिनो। संदन अठ ॿार हुआ जेके सभई गुरबाणीअ जो कीर्तन कंदा हुआ, ऐं उन्हनि सभिनी जा ॿार अॼु बि गुरबाणी कीर्तन कंदा आहिनि। ऐं गुरबाणी कीर्तन कॾहिं पैसे लाइ कान कंदा आहिनि। दादा जन जी आज्ञा हूंदी हुई त गुरबाणी कीर्तन गुरु साहिब लाइ करणो आहे ऐं गुरु साहिब खे ई ॿुधाइणो आहे। दादा चेलाराम ऐं उन्हनि जे पूरे परिवार, ख़ासि तौर सां दादा लक्ष्मण दास चेलाराम साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद 6 भाषाउनि में कयो ऐं सुखमनी साहिब जो अनुवाद 15 भाषाउनि में कयो। संदन परिवार जन जन में गुरबाणीअ जी अलख जगाए रखी आहे। 55 वरियन जी उमिरि में दादा नौकरीअ मां रिटायर थी आख़िरी 5 सपरून हिमाचल प्रदेश में बिताया। दादा साल में 7 ॿाहिरि कीर्तन लाइ वेंदा हुआ ऐं 5 आश्रम में रहंदा हुआ। दादा पूरे देश में ॿाहिरनि माण्हुनि खे गुरबाणीअ जो ज्ञान भरपूर ॾिनो। गुरबाणीअ सार आहे, प्रभु की शरण सगल भैला थे। जेको बि प्रभु जी शरण वठे थो, उन जा सभु दुख दूर थी था वञनि, सभु कष्ट दूर था थी वञनि। ऐं चवंदा आहिनि, प्रभु ते भूलिया व्यापन सभु रोग। अगरि असां प्रभुअ खे भुलायो आहे त सभु तरह जा रोग अची असांखे वठ कंदा आहिनि। त इहो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरबाणी साहिब जो सार आहे ऐं इहो ई मैसेज दादा जन हमेशह सभिनी इंसाननि खे ॾींदो। 1964 में अंतिम 5 कीर्तन यात्रा जे दौरान कीर्तन कंदे दादा खे आगरे में दिलि जो दौरो पियो। संदन सिख शेवक दादा खे वठी दिल्ली आया। दिल्लीअ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐं निज थांव जे विच में दादा

0: जीवन जा आखिरी श्वास वरता। दादा जन कदें भी कीर्तन पैसे लाए, पुरस्कार लाए, सम्मान लाए, प्रचार लाए या कहें कामना सा कौन कयो, सिर्फ प्रभु लाए कयो, प्रभु के समर्पित कयो। उनन पहनजो पूरो जीवन सेवा ए सिमरन में लगाए पहनजो जीवन सफल करो व्या ए असा सबनी लाए राह रोशन करे व्या। मां आकाशवाणी जे बानीकारन के धन्यवाद दींदुम त हेणन संतन जे बारे में मुखे उनन जा विचार रखण जो मौको दिनो वियो ऐं इन माध्यम सां सभिनी माण्हुनि ते इहे ॻाल्हियूं पहुचंदियूं। धन्यवाद।
1: ऐं हिन खां पोइ अचो त वरी हिकु गीत ॿुधूं था, सरला ऐं बुलोसी राणीअ जी आवाज़ में फिल्म अबाणा प्रभु वफ़ा जो गीत।
2: जान।

त साथियो अॼु जो कार्यक्रम इते ई पूरो करण जी ॾींदा पंहिंजी रेडियो साथी हर्षा मूलचंदाणी खे इजाज़त जल्दी तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी नए रूप नए गाना नए ख़बरुनि सां गॾु वरी गॾिजबो सभ जो भलो

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहाण, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे उमरिया जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है उमरिया जिले की चिट्ठी। आलेख अरुण त्रिपाठी, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। उमरिया जिले में कल प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल निगम, विद्युत निगम तथा खाद्य विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा में आम जनता तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्वीकृत कार्यों में से 289 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि पुराने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण को जन अभियान का रूप दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन कार्य बीते 15 अप्रैल से किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। बीती 9 मई तक जिले में 13,597 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जिनमें से 10,129 किसानों ने स्लॉट की भी बुकिंग कराई है। उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने भी कल गेहूं उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीती 28 अप्रैल को 4 साल की मादा हथिने गायत्री की मौत हो गई। पार्क प्रबंधन ने मृत हथिने की मौत का कारण एंथ्रेक्स नामक संक्रामक बीमारी के प्रकोप का होना बताया, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए समीप जंगलों में इस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार और बचाव के निर्देश जारी किए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही बीती 15 अप्रैल को बाघ संरक्षण के विभिन्न आयामों पर सार्थक संवाद और लंबित बाघ मृत्यु प्रकरणों का शीघ्र एवं वैज्ञानिक तरीके से अंतिम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश राज्य वन प्राणी शाखा भोपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार दिल्ली तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। उमरिया जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम प्रकड़कों और सुपरवाइजरों के माध्यम से घर घर जाकर कराया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी अधिकारी जनगणना प्रत्युष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले की जनगणना को लेकर मकानों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत 1,14,251 मकानों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसी क्रम में उमरिया जिला कलेक्टर राखी सहाय ने मानपुर जनपद पंचायत पहुंचकर वहां सहरा ग्राम में की जा रही सूचीकरण की एंट्री HLO ऐप के माध्यम से अपने समक्ष करवाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य की जानकारी ली तथा प्रकरणकों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करने के संबंध में निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी, पारदर्शिता और शुद्धता के साथ किया जाए ताकि शासन को सही आंकड़े प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक जनगणना कार्य में सहयोग करें ताकि जिले का सही आकलन हो सके। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत अभय सिंह, SDM मानपुर हरनीत कौर कलसी और जनपद CEO मानपुर अंकित सिरोठिया सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60,386 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 58,841 हितग्राहियों का सत्यापन भी किया जा चुका है। सत्यापन हेतु 1,545 परिवार अभी शेष हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी स्वीकृत आवास समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश ग्राम पंचायतों के सचिवों को दिए गए हैं तथा शेष सत्यापन कार्य भी 20 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उमरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कुल 308 नल जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 246 पूर्ण हो चुकी हैं। तथा 62 योजनाएं इन दिनों प्रगति पर हैं। इसके साथ ही उमरिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: उमरिया जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षा।
1: हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम महफिले गजल। श्रोताओं, गजल सिर्फ संगीत नहीं होती, ये वो एहसास है जो खामोशी में भी बोलना सिखा देती है। जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा होता है कि मंजिल तो याद रहती है पर रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तो पेश खिदमत है इस महफिल की ये पहली गजल सलमा आगा की आवाज में।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: आपको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तीनों कॉलेज
2: दिल के कोने में एक उम्मीद और किसी के अल्फाजों का एक विश्वास। जी हाँ, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन जज्बात वही रहते हैं। बस उन्हें महसूस करने का अंदाज बदल जाता है। पेश है ये खूबसूरत सी गजल गुलाम अली की आवाज में।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियल।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, कई बार जिंदगी उस मोड़ पे आ जाती है कि अल्फाज ही कम पड़ जाते हैं और एहसास ज्यादा बोलते हैं, मगर अपने अपन की खूबसूरती तो तब होती है जब हम सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं।

0: करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं ग्राम तगरा जिला पन्ना से अंजना प्रजापति बात कर रही हूँ।
0: जी अंजना, कैसी हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
0: बहुत दिनों बाद,
1: अच्छा लग रहा
0: है। ऐसे ही होता है, बहुत बहुत दिनों में बात हो तो अच्छा लगता है। क्या चल रहा है बाकी?
1: जी मैम मुझे गाना सुनवा दीजिए, मूवी का नाम है विजयपथ, उसमें गीत है राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: विजय पथ का गीत आप सुनना चाहती हैं, और हम पूछ रहे थे कि इन दिनों क्या चल रहा है।
1: मैम इन दिनों कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और कभी कभी बारिश भी होने लगती है, तो मौसम में बहुत परिवर्तन है। घर के काम करते हैं और पढ़ाई भी साथ साथ में करते हैं।
0: अच्छी बात है, दोनों काम जरूरी है, करते रहिए। और अगली बार जब आपसे बात होगी तो कोई नया गीत लेकर आइए, क्योंकि विजय पथ का गीत हमें पता है आपको बहुत पसंद है, आप कई बार सुन भी चुकी हैं, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी ही पसंद का गीत।
1: ओके मैम, थैंक।

0: फोन करिए, गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार, मैं हूँ रामबाबू मालवी, बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
0: जी मालवी जी, कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो?
0: बस हम भी अच्छे हैं। आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी आप सुनना चाहेंगे, हम रंग मूवी का कोई सा भी सुनवा दीजिए।
0: रंग मूवी का?
1: हाँ

0: जी, फिर भी क्या पसंद है इस मूवी में, कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है?
1: उसमें गाना वो अच्छा है, तुझे देके मेरी आके, इस प्रकार से गाना है
0: जी,
1: वो अच्छा है
0: बिल्कुल। तो आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक,
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: अनिल बामनियाल इंदौर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप अनिल जी?
1: बस बढ़िया है मैडम, आप कैसे हैं?
0: बस हम भी अच्छे हैं।
1: तो आज मुझे एक गीत सुनना है, जनता वलदार।

0: इसका कौन सा गीत है?
1: हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।
0: अनिल जी, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहूंगा।
0: बताइएगा,
1: आप चिट्ठी के जो प्रोग्राम है मैडम, वो अधिक से अधिक शामिल करें। आपका पत्र प्रोग्राम प्रसारित होता था, उसको पुनः शुरू किया जाए।
0: कौन सा प्रोग्राम?
1: आपका पत्र।
0: आपका पत्र, बिल्कुल।
1: हाँ, पहले आया करता, पहले आता था ये
0: जी। कोविड के पहले तक ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा है, उसके बाद के बदलाव में ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था। तो आपकी ये सुझाव और आपकी ये फरमाइश पहुंच गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा यकीनन आप तक पहुंचेगा। और जो पत्रों पर आधारित कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप, फरमाइश की, तो बस उसके लिए इतनी सी ही गुजारिश है कि जितने ज्यादा श्रोता जुड़ेंगे उसमें पत्र लिखने में, उतने ज्यादा पत्र शामिल होंगे। यदि एक ही व्यक्ति 100, 150, 500 पत्र डाल देगा तो पत्रों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन शामिल होने वाले पत्रों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी।
1: हाँ जी जी, ऐसा तो आपका ये आपका फरमाइश कार्यक्रम जो आता है
0: जी,
1: कई पत्र आते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
1: और मैं भी भेजता रहता हूँ।
0: बिल्कुल, और शामिल भी होते रहते हैं।
1: हाँ, होते रहते हैं।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगी सुने कार्यक्रम?
0: जी फोन करेंगी सुने कार्यक्रम।
1: जी दीदी जी नमस्कार, मैं छतरपुर बसारी गेट से राकेश वर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी राकेश वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं, जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है हमारे गोदाम पर।
0: हाँ तो बढ़िया छाया होती है, गर्मी का मजा तो हम लेंगे तभी बारिश की आमद होगी, तो इसलिए उस आनंद को तो लेते रहिए इस उम्मीद के साथ कि अच्छी बारिश होगी। तो
1: मुझे ध्यान आ रहा है कि आज शायद अनीता बोल रही हैं, अमिता जी,
0: अमिता त्रिवेदी बात कर रही हूँ मैं।
1: जी मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान, मैं मध्य प्रदेश आकाशवाणी से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, जबकि 1976 से जब से मैंने आकाशवाणी सुनना शुरू की है, मतलब रेडियो सुनना शुरू किया है, तब से मैं भोपाल से जुड़ा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, ये जुड़ाव आगे भी बरसों बरस बना रहे हम यही उम्मीद करेंगे। और अभी आपकी कौन सी पसंद पूरी की जा सकती है ये बताइए।
1: पसंद दीदी जी मौसम के हिसाब से तो गर्मी के हिसाब से गिरफ्तार करा रहा है, और कबीर रेडियो श्रोता संघ के नाम से हैं हम, तो कबीर रेडियो के नाम से है, तो एक गीत आ रहा है 10 नंबरी का।
0: 10 नंबरी का कौन सा गीत?
1: और 3 में से 1 गीत हमको चुनना है, कहें कबीर सुनो भाई साधु।
0: आपने एक तीसरी पसंद की भी बात की तो वो भी बता दीजिए।
1: तीसरा वो है, वो शादी ब्याह चल रहा है ना, तीन ऑप्शन थे हमारे पास,
0: हम जरूर पूरा करेंगे, आप ही इन 3 में से 1 चुन लें तो वो आप तक पहुंच जाएगा।
1: सोच रहे हैं कि कबीर वाला सुना दीजिए 10 नंबर का, क्योंकि ये बहुत कम बचता है।
0: तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है, आनंद लीजिए।
1: नमस्कार दीदी,
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक शुभारंभ हालांकि दो दिन पहले हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आशंकित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवीके सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ऊपर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव इस दौरान अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिल सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस के साथ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म नसीब से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार

आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कबरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब और मुश्तबा। अगले श्रोता है महनगर महाराष्ट्र से। श्रोता है अभिजीत, सरिता, सिद्धांत और प्रिंस। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म डॉन से। गीत लिखा है अनजान ने, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि। अगली श्रोता मलकापुर महाराष्ट्र से हैं। शत्रुघ्न

0: वाल्मीक, नीना जी, स्वप्निल और अजय किरोड़कर, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे

छोरा गुंडा किनारे बाल।

किशोर कुमार और एनेट पिंटो के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सत्ते पे सत्ता से। ये खूबसूरत गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है दिल्ली शहर से। श्रोता है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा और आकाश। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म कालिया से। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें सनावत से आई है। श्रोता है सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादाब। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रकीब की स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अभिमान से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार SD बर्मन। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में जो गीत सुनना चाहते हैं वो हमारी श्रोता भाटापारा दतरंगी से हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा और जावेद कुमार वर्मा। अगली श्रोता महाराष्ट्र बीड शहर से हैं, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, चौपाल पर आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे बतकहाओं बघेली पॉडकास्ट के अंतर्गत शशि बहिनी की शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह से बातचीत। विषय होगा लू से बच्चों की सुरक्षा। मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1189 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम का 11वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओं, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप बीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से यह सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए।

0: अच्छा मुनीम जी,
1: हाँ जी,
0: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की है, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
2: जनाब क्या लिखते हैं?
0: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं? लाइए वो जरा कलम दवात उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ। पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र आ पहुंचा। ये पत्र पहले से भी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था। प्यारे भैया, अच्छा तो उनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी है। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अरे सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
3: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
0: देखिए ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए, ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
4: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा?
0: वो
4: आप ही को मुबारक हो, आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
0: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक रियासत के मैनेजर थे, हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है। और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी

0: सो वो भी मैंने कर दिया है।
1: और इस तरह दो सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्वनी का महीना और तीसरा प्रहर था, रामलीला की धूम थी, मित्रों की ताश की बाजी चल रही थी।
0: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
2: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
3: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
2: जी आपने मुझे पहचाना?
3: नागा ढील टॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण, गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं।
0: जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
2: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
0: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक किस तरह?
2: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
0: अच्छा,
2: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहां बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
0: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पान इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
2: ये महाशय कौन है? आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
0: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
2: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
0: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सच धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रहता है।
2: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है। भोजन बहुत स्वादिष्ट था।
0: जी वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए, घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
2: जी हाँ सब आनंद मंगल, आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
0: जी धन्यवाद। जी आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
2: हाँ, जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है, एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है, एक पानी का बुलबुला है।
0: वाह वाह उमापति जी, क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है।
2: जी शुक्रिया शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए?
2: जी बिल्कुल,
0: वापिस लौट कर वापिस अपना कविता पाठ सुनते हैं।
2: जी जरूर।
0: आइए।
2: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
0: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
2: जी बिल्कुल।
0: जी हाँ उमापति जी, बताइए अचानक कैसे आना हुआ आपका?
2: भाई साहब मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ, वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी, और वहीं ससुराल भी है।
0: जी
2: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है, मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएं मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊं। भाई साहब वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
0: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी शुभरात्रि।
2: शुभरात्रि।
0: अरे उमापति जी सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
2: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
0: अच्छा
2: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
0: अरे नहीं नहीं कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
2: मैं कल चला तो प्रातः काल के 4 बजे थे।
0: जी
2: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
0: अच्छा
2: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
0: अरे
2: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी।
0: जी
2: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और

0: लेट गया, तुरंत ही नींद आ गई।
1: अच्छा अच्छा,
0: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए, आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
2: कोट में 50 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे वे भी उसके साथ उड़ गए। अब क्या कहूं, दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, ना खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
3: इसकी बातों ने तो मुझे हंस मंजस में डाल दिया है, एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते, ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं, इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता।
4: अरे अजी सुनती हो?
3: अच्छा उमापति जी, आप यही ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो? तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
5: क्यों, क्या करोगे?
3: मेरे मित्र जो कल आए हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
5: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।
3: वो
5: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
3: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
5: तो कह दो इस समय घर में रुपये नहीं है।
3: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूँ, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं, इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते, कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।
5: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते। ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन उधार समझ कर मत देना, ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।
6: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे, उनकी अच्छी आवभगत की गई, स्वागत में 20 रुपए भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपए धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
7: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
5: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पाने की आशा मत करना, यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी, लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
3: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं, मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
2: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे कहूं। दरअसल वो बात यह है कि मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे और मुझे इतना अवकाश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे कहूं कि वो क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपए और दे देते तो मैं आपको वहां जाते भेज दूंगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास इक्के का किराया भी नहीं है।
3: जी मैं तो आ रहा है कि टका से जवाब दे दूं, पर क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी। बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। एक हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद ना तो रुपए आए और ना ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्म पत्नी ने कहा था वही सच था। इस कपट भरे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खिंचता हूं, तब जाकर कहीं नकद नारायण के दर्शन होते।
1: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
3: ठीक है, अंदर भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
8: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
3: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपए मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
8: जी मुझे स्वीकार है।
3: ठीक है। मुनीम जी।
9: जी।
3: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
1: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
3: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
1: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
8: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई। दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूंगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूंगा।
3: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो यहाँ रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। इसे सचमुच सहायता की जरूरत है, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा? भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
8: आप चाहे तो कुछ न कुछ

0: प्रबंध अवश्य कर सकते हैं। मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
1: यहाँ तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नीयत रहेगी? इसका क्या प्रमाण है? नीयत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं, ये भी कौन जाने? रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं? नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे, मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं?
0: सुनो बेटा, सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या? पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं। मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था, लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
2: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे, पहले तुम ये रोना बंद करो। लो, ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ। जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
0: नीम जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा। घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
1: अरे मुनीम जी, ये लड़का क्या कह रहा था? कुछ कहकर गया है क्या?
2: हाँ, वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है। मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
1: अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने। ये अच्छा ही हुआ। चलो, मुझसे ना सही, किसी और से ही सही। मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, दया, मनुष्यता, सद्व्यवहार, और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे, मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले, जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो, ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही, दूसरों पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही, पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छिकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा। किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां, एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
3: पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर है।
1: मनी ऑर्डर? अरे, ये तो उमापति ने भेजा है। अरे, सुनती हो? ये देखो, उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे और क्षमा लिखा है।
4: अच्छा, इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो, मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे, जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता, तब तक वो

0: किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
1: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपए भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइधा, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कर। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टीवीके के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। डॉ. यादव अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अब तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रदेश में तेज गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। दोपहर के 1 बजे है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

मुनिका सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज की चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, सखियां सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें के विषय में। जी हाँ बहनों, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, इसलिए

आज से 12 मई तक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के रूप में हम मना रहे हैं। बहनों, सड़क सुरक्षा आज के समय में एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। बढ़ती वाहनों की संख्या और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बहनों, सड़क पर वाहन चलाते समय कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें और दूसरों को सुरक्षित रख सकती हैं। सबसे पहले हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह हमारी सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार ही अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना बेहद खतरनाक है। इससे ध्यान भटकता है और हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें नशे की हालत में भी कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। पैदल यात्रियों का सम्मान करें और उन्हें रास्ता दें। सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। बहनों, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें यह याद दिलाने का एक अवसर है कि सड़क पर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर नियमों का पालन करें और जागरूक बने, तो हम कई कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही जीवन है। रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पहचान बन जाए। हर मोड़ पर जीवन की कीमत याद आए। एक नियम पालन 100 खुशियां बचाए। सड़क पर सावधानी, घर तक सही सलामत पहुंचाए। बहनों, सड़क केवल यात्रा का मार्ग नहीं होती, वह विश्वास का रास्ता होती है, जहां हर व्यक्ति यह उम्मीद लेकर निकलता है कि वह सुरक्षित अपने घर लौटेगा। बहनों, सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा संस्कार और हमारा जीवन है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी हैं। बहनों, प्रश्न यह नहीं है कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें रोकने के लिए जागरूक हैं। बहनों, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। आपके एक सेकंड की गलती पूरे जीवन की सजा बन सकती है। बहनों, सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों को जानने का नाम नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सड़क पर चल रहा है। सबके लिए नियम समान रूप से महत्वपूर्ण है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना, सिग्नल का सम्मान करना, ये सभी छोटे छोटे कदम आपके लिए और दूसरों के लिए जीवन बचा सकते हैं। बहनों, सड़क पर दिखावा नहीं, सुरक्षा अपनाओ। स्टंट करना रोमांच नहीं, यह केवल जोखिम और मृत्यु की ओर एक कदम है। तस्वीरों या रील्स के लिए जान को जोखिम में डालना कोई बहादुरी नहीं, वह मूर्खता है। सरकार कानून बनाती है, पुलिस व्यवस्था संभालती है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। जब हम खुद नियमों का पालन करेंगे, तभी दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, एक जिम्मेदार नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव रखता है। सड़क पर हर व्यक्ति किसी का अपना होता है। जो सामने से आ रहा है, वह भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। सड़क पर संयम, सहानुभूति और अनुशासन अपनाइए। गुस्सा नहीं, समझदारी दिखाइए। हॉर्न नहीं, धैर्य बजाइए। आइए, आज हम सब यह संकल्प लें कि हम तेज गति नहीं अपनाएंगे और नियमों का पालन करेंगे।

छाया सेवा का सार, दर्द भी देती जीवन का उपहार, खामोशी से करती मानवता का काम, नर्सें ही हैं सेवा का सच्चा नाम। जी हाँ बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सबसे पुनीत कार्य निभाती नर्स के विषय में। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं, उन अनगिनत नर्सों के समर्पण, त्याग और करुणा को नमन करने का दिन है जो दिन रात बिना थके हमारी सेवा में लगी रहती हैं। बहनों, यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने न केवल नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाया बल्कि इसे मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण भी स्थापित किया। 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने आधिकारिक रूप से इस दिन को नर्स दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की ताकि दुनिया भर में नर्सों के योगदान को सम्मान दिया जा सके। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले सबसे अधिक समय तक जो व्यक्ति उसके साथ रहता है वह नर्स ही होती है। डॉक्टर उपचार की दिशा तय करते हैं लेकिन उस उपचार को सही ढंग से लागू करने का कार्य नर्सें करती हैं। वे न केवल मरीज की देखभाल करती हैं बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सहारा देती हैं। यदि हम कोविड-19 महामारी के आंकड़े देखें तो आप जान सकेंगे कि इस महामारी के दौरान नर्सों की भूमिका ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे तब नर्सें अस्पतालों में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रही थी। कई नर्सों ने अपने परिवारों से दूर रहकर दिन रात काम किया ताकि वे दूसरों की जान बचा सके। यह केवल एक नौकरी नहीं थी बल्कि यह एक सच्ची सेवा और त्याग का उदाहरण था। नर्सें केवल इंजेक्शन लगाने या दवाइयां देने तक सीमित नहीं होती, वे मरीज की भावनाओं को समझती हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करती हैं और उसे आशा देती हैं। जब एक मरीज निराश होता है तब नर्स ही उसे वह विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी मुस्कान, उनका धैर्य और उनकी संवेदनशीलता ही मरीज के लिए सबसे बड़ी दवा बन जाती है। बहनों, इस दिन का महत्व केवल नर्सों को सम्मान देना नहीं है बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि नर्सें भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं और परिवार होते हैं, फिर भी वे अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानती हैं और दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं। आज के समय में नर्सिंग केवल सेवा तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र बन चुका है। नर्सें अब आधुनिक उपकरणों का संचालन करती हैं, जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करती हैं और स्वास्थ्य अनुसंधानों में भी योगदान देती हैं। इस बदलते समय में नर्सिंग का महत्व और

पड़ गया है बहनों। हमें यह समझना होगा कि यदि हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें नर्सों का सम्मान और सहयोग करना होगा। हमें युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि भविष्य में नर्सों की कमी को दूर किया जा सके। सरकार और समाज दोनों मिलकर नर्सों के कार्यस्थल की स्थिति और सुरक्षा को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि नर्सें केवल अस्पताल की कर्मचारी नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवक है। बहनों, आगे अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज ही के दिन यानी मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जा रहे एक बहुत ही खास दिन मदर्स डे के विषय में। जी हाँ बहनों, दुनिया में सबसे कठिन, सबसे पवित्र और सबसे अनमोल है माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि यह एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसी छाया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। इस दुनिया में कई रिश्ते बनते हैं लेकिन माँ का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। वह हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है, हमारे हर दर्द को सहती है और बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करती है। माँ की भूमिका इसलिए सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि वह एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाती है। वह हमारी पहली शिक्षक होती है जो हमें बोलना, चलना और अच्छे संस्कार सिखाती है। वह हमारी रक्षक होती है जो हर मुश्किल से हमें बचाती है। वह हमारी दोस्त भी है जो हमारी हर बात बिना कहे समझ जाती है। माँ अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग कर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वह दिन रात मेहनत करती है लेकिन कभी थकान की शिकायत नहीं करती। उसकी खुशी सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान में होती है। सच कहूं तो माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हम केवल उन्हें सम्मान, प्रेम और आदर देकर उनके त्याग का थोड़ा सा मान रख सकते हैं। इस मदर्स डे पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपनी माँ का हमेशा सम्मान करेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे और उन्हें गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ के साथ हर मुश्किल आसान है। बहनों, माँ हमें हर एक बुरी नजर से भी बचाती है, इसीलिए तो वो माथे पर काजल का टीका लगाती है। और एक दिन जब हम कामयाबी के शिखर को छू लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी मेहनत नहीं बल्कि माँ की मेहनत है जिसने हमें कदम कदम पर प्रोत्साहित किया और हमारी कामयाबी के लिए उपवास किया। क्या कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर सकता है? शायद नहीं। क्या अंबर, क्या धरती माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बदलते इस परिवेश में हम अपनी उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। हर वक्त भगवान से हमारी खुशियां ही मांगी हैं। जब कभी भी मैं इस वृद्धाश्रम में माताओं को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू झलक आते हैं और यह दिल रोने लगता है और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर। क्या उसने इसीलिए हमें पाला है कि आज हमने उसे उसके घर से ही निकाल दिया? लेकिन बहनों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त हम पर भी आएगा और इतिहास अपने आप को दोहराएगा और उस वक्त हमको अपनी गलती का एहसास कराएगा। लेकिन तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास सिवाय पश्चाताप की ज्वाला के कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते हमें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए क्योंकि भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों पर अपनी माँ के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, वर्ल्ड ल्यूपस डे, जिसे हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। बहनों, ल्यूपस एक गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद अपने ही उत्तकों और अंगों पर हमला करने लगती है। यह बीमारी त्वचा, जोड़ों, किडनी, हृदय और मस्तिष्क तक को प्रभावित कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, जिससे इसका सही समय पर निदान करना कठिन हो जाता है। बहनों, विश्व ल्यूपस दिवस का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना, समय पर पहचान और सही इलाज के महत्व को समझना है। ल्यूपस के मरीजों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। समय पर पहचान और उचित इलाज से ल्यूपस को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। ल्यूपस हो जाने पर खाने पीने का सही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी शरीर में इम्यून सिस्टम और सूजन से जुड़ी होती है। सही डाइट लक्षणों को नियंत्रित करने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करती है। सूजन कम करने के लिए खाद्य पदार्थ जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जिनमें सेब, संतरा, पपीता, बेरी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च खाने से सूजन में आराम मिलता है। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स ये दर्द और सूजन दोनों को कम करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे राजमा, दालें, चना, पनीर, दूध, दही, अंडा यदि आप खाते हैं तो, साबुत अनाज और सुबह और शाम की हल्की धूप, जिससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, ल्यूपस में काफी लाभकारी होती है। बहुत ज्यादा नमक, जंक फूड, मिठाइयां, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए और जैसा आपके डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करें, क्योंकि इसमें सभी मरीजों के लक्षण अलग होते हैं। बहनों, गर्मियों में सत्तू यानी भुने चने का आटा बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह देसी सुपर फूड न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि ऊर्जा भी बनाए रखता है। फाइबर ज्यादा होने से पेट साफ रहता है और कब्ज नहीं होती। पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है। नमक व नींबू के साथ लेने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित रहते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। यह धीरे धीरे ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे शुगर लेवल स्थिर रहता है। सत्तू के इतने फायदे हैं तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं सत्तू का मीठा शरबत और नमकीन शरबत। मीठे शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4-5 चम्मच सत्तू, शक्कर स्वाद अनुसार जितना मीठा आप लेना चाहें, एक चुटकी नमक, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, ठंडा पानी 1 ग्लास। सभी चीजों को एक कटोरे में अच्छे से मिला ले। अब इसे एक ग्लास में सर्व करें, जिसमें कि आप कुछ बर्फ के आइस क्यूब्स डाल दें, ठंडा ठंडा पीने पर काफी अच्छा लगता है। बहनों, यह तो था मीठा शरबत। इसी तरह नमकीन शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी, 2-4 चम्मच सत्तू, बारीक कटी प्याज 2 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, हरी मिर्च यदि आप बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो इसे अवॉइड करें, और यदि आपको पसंद है तो 1/4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना जीरा 1/4 चम्मच, काला नमक, सादा नमक स्वाद अनुसार मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। एक नींबू का रस निचोड़ दें, बर्फ डालें और ठंडा ठंडा सर्व करें। इसे आप गर्मियों में काम पर जाते समय भी पी सकते हैं, इससे भूख भी नहीं लगेगी और आप पूरे दिन रिफ्रेश भी रहेंगे। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मुनिका चतुर्वेदी को दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: सब पार्टी।
1: ये
0: चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं पूरी डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार है मोहन सिंह कुशवाहा। आइए सुनते हैं इनसे लोकगीत।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इसे, ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी श्योपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।

0: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
0: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी, नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: पर दी,
7: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
7: अच्छा।
0: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: पहुँचेंगे बार बार, बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत विशाल मिश्रा और राहुल की आवाजों में है। फिल्म का नाम आर आर आर।

सुनिधि चौहान की आवाज में गाए धूम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव 1,059 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि टोल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। गेहूं का उपार्जन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार परिसर में मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को एमपीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डीआरडीओ और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में होगा, वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शंकरकुइया क्षेत्र में 35 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त रिटर्निंग वॉल का नगर पालिका परिषद ने निर्माण शुरू करवाया है। शिवपुरी कलेक्टर ने ग्राम टोंगरा और राजगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आशा कार्यकर्ताओं और सीएचओ के से सेवाओं की जानकारी ली। और रायसेन ने जनगणना 2027 के हाउस लिस्टिंग में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश अब दोपहर समाचार दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
4: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा

0: के विशेष केंद्र हैं।
1: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने 1 दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।

0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: रविवार के साथ ही मैं आ गई हूँ आपकी अपनी प्रीति दीदी लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में स्वागत है बच्चों आपका। होती है बड़ी प्यारी माँ, जग में सबसे न्यारी माँ, सुख सारे हमको देकर दुख सारे हर लेती माँ, सदा प्यार हमको देती है, ममता का तो सागर है माँ। जी हाँ बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि आज मैंने कार्यक्रम की शुरुआत माँ पर लिखी कविता से क्यों की है। हाँ बच्चों, आज है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो बच्चों, मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी बहुत उत्साहित ही होंगे। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास और सबसे प्यारा रिश्ता है। उस माँ को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को यह मदर्स डे मनाया जाता है।

0: बच्चों, हर समस्या, हर उलझन माँ के पास आकर खत्म हो जाती है। वो सहज ही हमें सारे उपाय सुझा देती है। तो इतनी प्यारी माँ को आज के दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज देने का मन तो आप सभी ने बना रखा है। हम भी आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आपके बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी हैं। तो आओ जान लेते हैं आज वो क्या विशेष कर रहे हैं अपनी मम्मा के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके दोस्तों से जान लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाश्वत तारे है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही चौधरी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशिका मेरिया है और मैं क्लास 7 की छात्र हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम ग्रंथ मेरिया है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ।
5: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश मिश्रा एंड मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ।
0: सभी बच्चों ने अपने नाम बता दिए हैं, तो सभी बच्चे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं और कुछ न कुछ आज धमाल करेंगे अपनी मम्मा को खुश करने के लिए, उन्हें सरप्राइज देंगे। क्यों शाश्वत, है ना?
1: हाँ दीदी, आज तो मदर्स डे है, आज तो हम अपनी मम्मा को खुश करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार करेंगे।
0: क्या बात है, सरप्राइजेस तैयार करेंगे, तो क्या क्या चीज सोच रखी है आपने?
1: मैं मम्मी के लिए केक बनाऊंगा, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के दूंगा और बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। दीदी, ये तो आपको पता ही है कि भगवान हर समय हमारे साथ नहीं आ सकते, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। हर इंसान की प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है और मेरी भी प्रथम गुरु मेरी माँ ही है। दीदी, तो क्या मैं आपको एक प्यारी सी कविता मेरी माँ के ऊपर सुना सकता हूँ?
0: क्यों नहीं शाश्वत, तुमने इतनी अच्छी बात कही कि जहाँ पर भगवान नहीं होते हैं वहाँ पर माँ होती है, हर मुसीबत को दूर करने के लिए, आपसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। तो अपनी माँ के ऊपर एक कविता सुनाना चाहते हैं, तो सुनाइए।
1: माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला, मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली, सुबह सवेरे मुझे जगाती, कृष्णा कर मुझे जगाती, जल्दी से तैयार मैं होता, उसके कारण स्कूल जा पाता, माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करता गड़बड़ घोटाला, जब मैं करता कोई गलती, समझाने की कोशिश करती, लुटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुरार, मुझ पर गुस्सा जब है आता, 2 में उड़ भी जाता, मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान, माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला।
0: वाह शाश्वत, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई अपने माँ के ऊपर।
1: दीदी, मुझे एक कविता और आती है, मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, प्यार से सुबह मुझे जगाती, मीठा दूध पिलाती है, बना के मुझे सुंदर कपड़े, स्कूल छोड़ के आती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती, अपने हाथ से मुझे खिलाती। मुझे प्यारी मेरी माँ, दुनिया से है न्यारी माँ, दुनिया से है प्यारी माँ,
0: दुनिया से है प्यारी माँ और दुनिया से है न्यारी माँ। बहुत ही प्यारी सुंदर।

0: कविता शाश्वत आपने सुनाई। अब मुझे वंशिका बताएगी कि वंशिका ने क्या तैयारियां करी है मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए।
1: दीदी, आज मैंने सुबह उठ के मेरी मम्मा को फूलों का गुलदस्ता बना के गिफ्ट किया।
0: अच्छी बात बताई कि तुमने अपनी मम्मा को सुबह उठते ही फ्लावर का एक बुके गिफ्ट करा। और क्या करना चाहती हो अपनी मम्मा के लिए?
1: आज मैं अपनी मम्मा को वाटरमेलन का जूस बना के दूंगी, जिससे मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हो जाएगी।
0: आपकी मम्मा बहुत खुश हो जाएंगी, तो आप अपने दोस्तों को बताएंगी कि कैसे आप वाटरमेलन का जूस बनाएंगी?
1: हाँ दीदी, पर पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वाटरमेलन होता है वो बहुत फायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। तरबूज में सबसे ज्यादा लाइकोपाइन पाया जाता है। लाइकोपाइन से फल और सब्जियां लाल रंग के दिखाई देते हैं। तरबूज खाने से दिमाग रिलैक्स रहता है। विटामिन की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। अब मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी वो कैसे वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं। सबसे पहले तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद मिक्सर में किसी बड़े की मदद से तरबूज के साथ चीनी और 2-3 पुदीने की पत्तियां डालकर पीस लीजिए। इसके बाद छन्नी या पतले कपड़े की मदद से इसे एक गिलास में छान लीजिए। अब एक पिंच काला नमक और आधा नींबू का रस मिलाकर पुदीने की पत्तियों से सजाकर अपनी मम्मा को सर्व कीजिए। देखना, आपकी मम्मा भी बहुत हैप्पी हो जाएंगी।
0: हम भी बहुत खुश हो गए हैं वंशिका, तुमने इतनी अच्छी रेसिपी अपनी मम्मा के लिए बनाने का प्लान करा है।
1: दीदी, बातें तो बहुत हो गई है, पर क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत अच्छी बात है वंशिका, मम्मा के ऊपर क्यों ना एक गीत सुने।
1: हाँ दीदी।
2: तू कीर्तन

0: दीदी मेरी कविता का शीर्षक है माँ की ममता माँ का प्यार। माँ की ममता माँ का प्यार छूटा है सारा संसार, लोरी गाती पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुलार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की आँखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हम, मीठे स्वर में रही पुकार। माँ की ममता माँ का प्यार, दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती, करे खिलौनों की भरमार। माँ की ममता माँ का प्यार, माँ की ममता माँ का प्यार।
1: अरे वाह सूर्यांश, तुमने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। शाश्वत तुम भी तो कुछ बोलने वाले थे ना?
2: हाँ वंशिका, मैं भी कुछ लेकर आया हूँ, पर उसमें कुछ बात है और तुम ही बताओ कि उसमें क्या बात है।
1: मैं बिल्कुल कविता सुन के बताऊंगी कि उसमें क्या बात है।
2: मम्मी कहे नहाना है पानी मगर बचाना है, ये भी कोई बात हुई सोच सोच कर रात हुई, खाना रोज बनाना है पानी मगर बचाना है, अजब गजब मम्मी का रूल, हर बातों को देती तूल, वो रोज लगाना है पानी मगर बचाना है, मम्मी का निर्देश कड़ा लगे टार्च और बहुत बड़ा, कपड़े को चमकाना है पानी मगर बचाना है।
3: हाँ शाश्वत मैं समझ चुकी हूँ कि इस कविता में पानी बचाने का संदेश है।
2: बहुत अच्छी बात कही पीहू तुमने, तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगी।
3: हाँ शाश्वत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीहू और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: पीहू तुम्हें तो पता ही है कि आज मदर्स डे है, तो तुम अपनी मम्मा को कौन सा सरप्राइज देने वाली हो?
3: हाँ शाश्वत, आज मैंने अपनी मम्मी के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है और मैं उनको एक भी काम करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा कहते कि घर में जो पेट्स होते हैं उन्हें गर्मियों के समय बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। तो दोस्तों, तेज गर्मी में डॉगीज को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें होने लगती है, उसके लिए उनकी डाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहद जरूरी है कि गर्मियों के दौरान वे भरपूर खाए ताकि उन्हें सफिशिएंट एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलती रहे। बिल्लियों के लिए शेड बनाए या उनके सोने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्स रख सकते हैं। गर्मी से बचाने के लिए उन्हें गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तेज गर्मी में उन्हें कूलर या एसी वाले कमरे में रखें। एक्वेरियम में रखी गई मछलियों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी है कि टैंक का पानी रोज बदला जाए। पानी बदलने का सबसे अच्छा समय होता है शाम का।
2: अरे वाह पीहू, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी पेट केयर के ऊपर कि हमें अपने पेट्स का ध्यान कैसे रखना है इन गर्मियों में।
3: हाँ शाश्वत, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्यों ना अब हम अपने दोस्तों के साथ गीत सुन लिया जाए।
2: हाँ पीहू, चलो एक गीत सुनते हैं।

0: दीदी गीत तो हमने सुन लिया, पर अब शाश्वत हमारे बीच एक रोचक जानकारी लेकर आया है, तो चलिए हम सब सुनते हैं।
1: बिल्कुल आरुही, गीत हमने सुनवा दिया है, तो अब शाश्वत जो रोचक जानकारी लेकर आया है हम सभी मिलकर सुनते हैं।
2: दोस्तों, मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में माँ के प्रति प्यार और सम्मान के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदर्स डे विश्व में अलग अलग तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इटली में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ला फेस्टा डेला मम्मा कहकर माँ को विश किया जाता है। इसका मतलब होता है हैप्पी मदर्स डे मम्मा, ऐसा कहा जाता है। ला फेस्टा डेला मम्मा माँ के आराम का दिन होता है। सर्बिया में मदर्स डे दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यहाँ लगातार 3 हफ्तों तक हर रविवार पहले चिल्ड्रंस डे, फिर फादर्स डे और अंत में मदर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, जापान में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ इसे हाहा नोही कहा जाता है। माताओं को शक्ति का प्रतीक मानकर उनका सम्मान किया जाता है। बच्चे स्कूलों में और घर पर अपने माँ के चित्र बनाते हैं, घरेलू कामों में उनका हाथ बटाते हैं और खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। फ्रांस, दोस्तों फ्रांस में मई के अंतिम सप्ताह या जून के शुरुआती सप्ताह में यहाँ फैट डेस मैरिस नाम से मातृ दिवस उत्सव मनाया जाता है। यहाँ मदर्स डे के दिन माँ आराम करती है और उस दिन उनके बच्चे ही उनका सारा काम करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा मदर्स डे कितनी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है।
1: बिल्कुल, आपके दोस्तों को तो पता चल गया और हमें भी पता चल गया है कि मदर्स डे कितने तरीकों से और विश्व में कहाँ कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है।
2: अब क्यों ना दीदी एक गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक गीत सुन लेते हैं सभी के साथ।

0: और अब हमारे साथ ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा है ग्रंथ। ग्रंथ हमें बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो।
1: दीदी, इन गर्मियों की छुट्टी में मामा घर जाऊंगा, स्विमिंग सीखूंगा और डांस करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मामा के घर जाएंगे और डांस सीखेंगे, स्विमिंग करेंगे। और क्या करने वाले हैं आप?
1: मेरी मम्मा कहती है कि शाम को साइकिल चलाना चाहिए, इसीलिए मैं शाम को साइकिल चलाता हूँ कि दिन में तो बहुत धूप होती है। और मेरी मम्मा कहती है कि धूप में नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहती है आपकी मम्मा, क्योंकि आपकी मम्मा चाहती है कि आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि धूप बहुत तेज होने से आपको लू भी लग सकती है ना
1: दीदी।
0: और अब आरोही हमें कुछ बताना चाहती है।
2: दीदी, तो आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज मैं मेरी मम्मा को पेपर डॉल गिफ्ट करने वाली हूँ।
0: आपने कहा कि आप पेपर डॉल गिफ्ट करेंगी, तो आपने कहाँ से बनाना सीखा?
2: अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाती हूँ और वहाँ से मैंने पेपर डॉल बनाना सीखा। तो आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूँगी, मेरे पापा के साथ मैंने सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है और मैंने खाने की बहुत सारी डिशेस बनाई हैं और एक प्यारा सा केक बनाया है। शाम को हम सब लोग मम्मा को सरप्राइज देंगे।
0: क्या बात है, मम्मा को सरप्राइज पार्टी देने वाली है और सारी प्लानिंग हो चुकी है ना?
2: हाँ दीदी।
3: दीदी, आज तो हमें बहुत मजा आया आपके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने में।
0: बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत मजा आ रहा है कि इतने प्यारे दोस्तों के साथ हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: बराबर कोई नहीं,
1: माँ के बराबर कोई नहीं। वाकई में बच्चों, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ होती है और वो हमें इतना प्यार करती है कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर देती है, है ना? तो आप सभी बच्चे आज खुश रहें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी मम्मा के साथ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे।
2: सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे।
1: तो प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार ऐसे ही प्यारे बच्चों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपनी प्रीति दीदी को दे अनुमति। बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। श्री मोदी ने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले को विकास की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल इंदौर में आयोजित 3 दिवसीय मैंगो यात्रा में 24 आम उत्पादक किसानों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में कल तक 9,78,000 किसानों से 60,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, वहीं दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 पर और शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिसमें 7:30 से 8:00 के बीच सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य, विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। डगर विकास की ये कार्यक्रम रात 8:15 होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की प्रस्तुति रहेगा। विषय रहेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे रात 8:30 और रात 9:30 कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन

कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। डीजे अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार मैथिल। सुनते हैं इनकी गाई ये गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।
1: आपकी पहचान, आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता, आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम रन। आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत साथिया फिल्म से लिया है, जिसे गाया शान और कुणाल ने, गुलजार के बोस संगीत, ए आर रहमान का।

0: राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सिंग इज किंग फिल्म का गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में सहभागिता की। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में मामा कोचिंग का शुभारंभ भी करेंगे। ये पहल क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर और निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। डीजे अब सुनिए कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

सिंधियत जे सुरहाण में अॼु क़बूलींदा हर्षा जे सिख भरी नमस्ते। जय झूलेलाल साथियो, अॼु मई महीने जो ॿियों आर्तवार। हिन दुनिया में ईश्वर जी सभिनीनि खां वधीक प्यारी ऐं सुंदर सुहिणी रचना, जंहिंजे निस्वार्थ प्रेम ऐं क़ुर्बानीअ लाइ हर शख़्स हुन खे ममता जी मूरत सॾींदो आहे, अहिड़ी माउ यानी माता जे सन्मान ऐं धन्यवाद ॾियण जो ई ख़ासि ॾींहुं आहे। माउ जी ममता जे अनमोल खज़ाने में पंहिंजे ॿारनि लाइ प्यार जा जेके मणिया निकिरंदा आहिनि, उन्हनि जी क़ीमत कंहिं भेटा, सूखड़ी या गिफ्ट जे रूप में चुकाए सघबी कोन्हे। पर हुन अनमोल प्यार जे लाइ जॾहिं लफ़्ज़ घटि थी वञनि, त पंहिंजी भावनाउनि खे गिफ्ट या सूखड़ीअ जो रूप ॾेई माउ जो सन्मान करण जो इहो ॾींहुं आहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सदीअ जे शुरूआति खां वठी इहो ॾींहुं मल्हाइणु अन्ना जर्विस जी पहल हुई। हुन वेस्ट वर्जीनिया जे ग्राफ्टन शहर में एंड्रियस मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में पहिरियों भेरो माता जी पूॼा ऐं उत्सव जी तयारी कई। तॾहिं खां पोइ हर साल मईअ जो ॿियों आर्तवार मातृ दिवस यानी मदर्स डे जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। ॿी ॻाल्हि कयूं त परिवार समाज जी हिकु अहिड़ी इकाई आहे जेका प्रेम, सुरक्षा ऐं संस्कार ॾींदी आहे। परिवार में अलॻि अलॻि माण्हू जुदा जुदा ज़िमेदारियुनि में ॿधल हूंदा आहिनि। कमु, पढ़ाई, नौकरी, सामाजिक जवाबदारियूं, इन्हनि सभिनीनि कारणनि सां परिवार सां गॾु वेही रिश्तनि खे मज़बूत करण ऐं आधुनिक चुनौतियुनि ते चर्चा करण जो वक़्तु घटि ई बचंदो आहे। परिवार जो महत्व उन जी सामाजिक, आर्थिक ऐं सांस्कृतिक भूमिका लाइ सुजाॻी आणण वास्ते संयुक्त राष्ट्र संघ पारां सन 1993 में 15 मई जो ॾींहुं परिवार ॾींहं जे रूप में मल्हाइण मुक़ररु कयो वियो। त विश्व परिवार ॾींहुं ऐं मदर्स डे जूं अव्हां सभिनी खे खोड़ खोड़ वाधायूं, शुभकामनाऊं ऐं परिवार में मस्ती, खिल, रौनक त ज़रूर हूंदी ई आहे। त इन ई मौके ते अचो गॾिजी ॿुधूं था ही मस्तीअ भरो गीत। गोवर्धन भारतीअ जी रचना, सी अर्जुन जो संगीत, भगवंती नावाणी ऐं सतराम रोहिड़ा जी।

0: आवाज।
1: अई अमा
2: चल पुट मां सद के वन्या है।
1: अमा मुखे शादी कराण खां अग कुंवार बाबत का पुछा गछा भी कए।
2: दिस दिस पुट मुखे डो न दे। अरे छोकरी त तू पानी पसंद करे आयो है ना।
1: हां पसंद भी मु कई शादी भी मु कई ए शादी सा गड जेके बंद पेती में 20 गिन्यू ए 25 तोला सोन 16 साड़ियों ए 50,000 रोकड़ वठी आसी।
2: मारा आस्ते गल है त किथे इनकम टैक्स वारा न बुधन। अरे अगे ही असा पत्रा कढाया वा त देती लेती में असा पाई बन वरती हुई सी।
1: आहा पाई भी कान वरती हुई सी उन हुंदे भी बंद पेती वठी तो पाण वट रखी। साड़ियों पाए तू जेवर पाए तू रोकड़ रखे सजी पाण वट अमा मूसा त वेदन कई थी।
2: लाला तो सा केड़ी वेदन थी है
1: अमा बुधाए।
2: हां हां एकदम चई दे।
1: अरे घोड़ा

साथियो, इन गीत खां पोए अॼु असां तव्हांखे वठी था हलूं वक़्त जी हुननि घिटियुनि में, अहिड़े सफ़र ते जिते ॻाल्हि थींदी फ़क़त भारतीय प्रसारण जी पीढ़ जी आधारशिला जी, यानी आकाशवाणीअ जी। साथियो, असां तव्हां सां रूबरू थियूं था त इहो फ़क़ति हिकु रेडियो स्टेशन कोन्हे, पर लखे भारतीय माण्हुनि जी यादूं, समाचार, ख़बरूं ऐं मनोरंजन जो साथी आहे, जंहिंखे असां आकाशवाणी नाले सां सुञाणूं था। उन जी दास्तान 1920 में शुरू थी हुई, जॾहिं बिजली बि हर घर कोन पहुती हुई ऐं तकनीकी विकास बि अॼु जेतिरो कोन हो। अहिड़े समय में रेडियो यानी ट्रांजिस्टर्स पंहिंजो जादू ॾेखारियो। सन 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब पंहिंजो पहिरियों प्रसारण कयो हो। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीअ बॉम्बे ऐं कलकत्ते में ॿ स्टेशन शुरू कया। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार हिन जी ज़रूरत ऐं महत्व सम्झियो ऐं पोइ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS जी शुरूआत कई वई। इहो हिकु प्रैक्टिकल क़दम सन 1932 जी 8 जून ते मक्कम थियो ऐं उहो ऐतिहासिक ॾींहुं आयो जो ISBS जो नालो मटे ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखियो वियो। ॿिए विश्व युद्ध जे वक़्तु इन जो महत्व अञा वधी वियो ऐं 1956 में ऑल इंडिया रेडियो खे आकाशवाणी नालो ॾिनो वियो। ईंदड़ 8 जून 2026 ते आकाशवाणी पंहिंजी प्रसारण सेवा जा 90 साल पूरा करे रही आहे। अवां सभिनीनि प्यारे रेडियो श्रोताउनि जा असां लख थो रहता आहियूं, जो तव्हांजे प्यार, पसंदगी ऐं विश्वास आकाशवाणी जी प्रसारण सेवा खे इन मुक़ाम ते पहुचायो आहे। ऐं हिन ॼाण खां पोइ अचो त गॾिजी ॿुधूं था हीअ लोली, सी अर्जुन जो संगीत, कृष्ण राहीअ जी लिखियलु, भगवंती नावाणीअ जी आवाज़ में EMI प्रोडक्शन जी पेशकशि।

0: भगवंती नावणीअ जी आवाज़ में कृष्ण रहीअ जी लिखियलु इहा लोली तव्हां ॿुधी रहिया हुआ ऐं हींअर पेश करे रहिया आहियूं असां संत साईं दादा चेलाराम जे जीवन ऐं उन्हनि जा महान वीचारनि ते हिकु ख़ासि वार्ता पेश कंदड़ आहिनि श्री लोकचंद जनयाणी जी। ही महान संत दादा चेलाराम साहिब उन्हनि जो जनम 3 मई ते थियो हुओ। गुरबाणीअ जो प्रचार प्रसार माण्हुनि में सेवा भाव जॻाइण वारा ही संत उत्तम वीचारनि जा धणी हुआ। अचो उन्हनि जे जीवन यात्रा ऐं वीचारनि खे वधीक विस्तार सां ॿुधूं था श्री लोकचंद जनयाणी जी आवाज़ में।
1: दादा चेलाराम जन जो जनम 3 मई 1904 में हिकु सिंधी परिवार में हैदराबाद सिंध में थियो। संदन पिता जो नालो डॉक्टर टेकचंद राचूमल मनखाणी ऐं माता जो नालो चेतबाई हुओ। संदन जे नंढी उमिरि में ई माता पिता ऐं भेण हिन फ़ानी दुनिया मां चालाणो कयो, जंहिं करे संदन बालपन अकेलेपन में ऐं चिंतनशील थी गुज़रियो। उन्हनि कानून जी डिग्री

हासिल कई ऐं वकालत सां पंहिंजो जीवन जी शुरूआत कई, पर संदनि इन प्रोफेशन में मन न लॻो। पोइ उन्हनि सिविल सेवा में पंहिंजो जीवन लॻायो, जिते उन्हनि खे धार्मिक ग्रंथनि खे पढ़ण ऐं समुझण लाइ बि टाइम मिलियो। सिखनि जे धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब संदनि जे दिलि ते वॾो असरु विधो। गुरुबाणीअ में उन्हनि खे रस अचणु लॻो ऐं प्रभुअ तरफ़ वधण लॻा। सभ खां पहिरीं उन्हनि कराचीअ जे गुरुद्वारे में कीर्तन करणु शुरू कयो। उन्हनि ॿारनि खे बि सेखारणु पढ़ाइण जो कमु चालू कयो। संदनि कीर्तन करणु सभिनी खे वणणु लॻो। धीरे धीरे उन्हनि जे कीर्तन खे ॿुधण लाइ चङा माण्हू गॾु थियणु लॻा। संदनि खे ननकाणा साहिब ऐं अमृतसर गुरुद्वारे मां बि वक़्तु बे वक़्तु कीर्तन लाइ नींढ मिलणु लॻी। उन्हनि घणनि ई गुरुद्वारनि में कीर्तन कयो, जंहिं सां संदनि खे दादा जी उपाधी मिली। इहा उपाधी पवित्र पुरुषनि या बुज़ुर्गनि खे ॾिनी वेंदी आहे। उहे हिकु मशहूरु सहजदारी सिख हुआ, जिन गुरबाणीअ जी अलख हर हंधि जॻाई। सिर्फ़ 24 सालनि जी उमिरि में ई 1930 में उन्हनि गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद अरबी सिंधीअ में कयो। हिन खां पहिरीं कॾहिं बि सिंधीअ में अनुवाद कोन कयो वियो हो। 1938 में कराचीअ में दादा चेलाराम आश्रम जी स्थापना कई वई, जिते ॿारनि खे गुरमुखी पढ़णु सेखारी वेंदी हुई ऐं साथ में ॿिए धर्म ग्रंथ ऐं संस्कारनि जी नींव बि विधी वेंदी हुई। 1947 में देश जे विरहाङे खां पोइ दादा पूरे परिवार सां गॾु दिल्लीअ में अची पंहिंजो घरु ठाहियो ऐं रक्षा मंत्रालय में नौकरी करे पंहिंजे परिवार खे पालण लॻा। 1958 में दादा जन दिल्लीअ में हिकु धार्मिक केंद्र निज थाम जी स्थापना कई, जंहिंजो मतिलबु आहे पंहिंजो स्थान, जिते गुरु ग्रंथ साहिब खां सवाइ ॿिए बि घणेई धार्मिक ग्रंथ जीअं त गीता, बाइबल, क़ुरान बि मौजूदु हुआ, जिते बिना जात भेदभाव जे कोई बि अची अध्ययन करे सघंदो हो। अॼु बि घणेई माण्हू इन जो फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दिल्लीअ में ई दादा जन निर्गुणा बालक सत्संग मंडल जी स्थापना कई। पोइ इन जूं शाखाऊं मुंबई, पुणे ऐं सोलन हिमाचल प्रदेश जे भरिसां सपरून में बि स्थापित कयूं वयूं। सपरून 15 अप्रैल खां 15 सितंबर ताईं अचण वारनि लाइ खुलियलु हूंदो आहे, जिते हिन वक़्तु संदन सुपुत्र हरीश चेलाराम ट्रस्टी जे रूप में शेवा ॾेई रहिया आहिनि ऐं इन्हनि सभिनी सेंटरनि ते अॼु बि ज्ञान जी नदियूं वही रहियूं आहिनि ऐं घणेई जिज्ञासु वञी करे उते पंहिंजे पाण खे विकसित करण लाइ फ़ाइदो वठी रहिया आहिनि। दादा ज्ञान जा भंडार हुआ। स्वभाव सां संयमी, धार्मिक ऐं निस्वार्थ भावना सां भरपूर, पाण खे हमेशह प्रभुअ जो निमाणो सेवक सम्झंदा हुआ। दादा जन जे वीचारनि सां हर इंसान खे समान अधिकार मिलणु खपनि, जीअं त जीवन, स्वतंत्रता ऐं सुख जी खोज शामिल आहे। दादा जन चवंदा हुआ त असां सभई ईश्वर जा सेवक कयूं, सभिनी सां प्रेम कयूं। हू हर जन जन जे शेवा लाइ पंहिंजो पाण खे शामिल करे छॾींदा हुआ। हर माण्हूअ जे शेवा लाइ हू हमेशह अॻियां वधी करे शेवा कंदा हुआ। दादा गुरबाणी ज्ञान सां रची वसी विया हुआ। उनजे रोम रोम में गुरबाणी वसियल हुई। दादा जन इहो ई ज्ञान पंहिंजे परिवार खे बि ॾिनो। संदन 8 ॿार हुआ, जेके सभई गुरबाणीअ जो कीर्तन कंदा हुआ ऐं उन्हनि सभिनी जा ॿार अॼु बि गुरबाणी कीर्तन कंदा आहिनि ऐं गुरबाणी कीर्तन कॾहिं पैसे लाइ कान कंदा आहिनि। दादा जन जी आज्ञा हूंदी हुई त गुरबाणी कीर्तन गुरु साहिब लाइ करणो आहे ऐं गुरु साहिब खे ई ॿुधाइणो आहे। दादा चेलाराम ऐं उन्हनि जे पूरे परिवार, ख़ासि तौर सां दादा लक्ष्मण दास चेलाराम साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो अनुवाद 6 भाषाउनि में कयो ऐं सुख

0: पनी साहब जो अनुवाद 15 भाषाउनि में कयो। संदन परिवार जन जन में गुरुबाणीअ जी अलख जगाए रखी आहे। 55 वरियनि जी उमिरि में दादा नौकरीअ मां रिटायर थी आख़िरी 5 सपरून हिमाचल प्रदेश में बिताया। दादा साल में 7 ॿाहिरि कीर्तन लाइ वेंदा हुआ ऐं 5 आश्रम में रहंदा हुआ। दादा पूरे देश में ॿाहिरनि माण्हुनि खे गुरुबाणीअ जो ज्ञान भरपूर ॾिनो। गुरुबाणीअ सार आहे, प्रभु की शरण सगल भैला थे। जेको बि प्रभु जी शरण वठे थो उन जा सभु दुख दूर थी था वञनि, सभु कष्ट दूर था थी वञनि। ऐं चवंदा आहिनि प्रभु ते भूली आहे व्यापन सभु रोग। अगरि असां प्रभुअ खे भुलायो आहे त सभु तरह जा रोग अची असांखे वठ कंदा आहिनि। त इहो गुरु ग्रंथ साहिब गुरुबाणी साहिब जो सार आहे ऐं इहो ई मैसेज दादा जन हमेशह सभिनी इंसाननि खे ॾींदो। 1964 में अंतिम 5 कीर्तन यात्रा जे दौरान कीर्तन कंदे दादा खे आगरे में दिलि जो दौरो पियो। संदन सिख शेवक दादा खे वठी दिल्ली आया। दिल्लीअ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐं निज थांव जे विच में दादा जीवन जा आख़िरी श्वास वरिता। दादा जन कॾहिं बि कीर्तन पैसे लाइ, पुरस्कार लाइ, सम्मान लाइ, प्रचार लाइ या कंहिं कामना सां कोन कयो। सिर्फ़ प्रभुअ लाइ कयो, प्रभुअ खे समर्पित कयो। उन्हनि पंहिंजो पूरो जीवन सेवा ऐं सिमरन में लॻाए पंहिंजो जीवन सफल करो विया ऐं असां सभिनी लाइ राह रोशन करे विया। मां आकाशवाणी जे बानीकारनि खे धन्यवाद ॾींदुमि त अहिड़नि संतनि जे बारे में मूंखे उन्हनि जा वीचार रखण जो मौक़ो ॾिनो वियो ऐं इन माध्यम सां सभिनी माण्हुनि ते इहे ॻाल्हियूं पहुचंदियूं। धन्यवाद।
1: ऐं हिन खां पोइ अचो त वरी हिकु गीत ॿुधूं था, सरला ऐं बुलोसी राणीअ जी आवाज़ में फिल्म अबाणा, प्रभु वफ़ा जो गीत।

त साथियो अॼु जो कार्यक्रम इते ई पूरो करण जी ॾींदा पंहिंजी रेडियो साथी हर्षा मूलचंदाणी खे इजाज़त। जल्दी तव्हां सां वरी मुलाक़ात थींदी नए रूप नए गाना नए ख़बरुनि सां गॾु। वरी गॾिजबो, सभ जो भलो।

0: अब सुनिए धारावाहिक जादूगर को सलाम का भाग 11। कार्यक्रम का नाम है संग्रहालय से।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओ, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की 11वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है उनकी एक कहानी आप बीती का नाट्य रूपांतरण। ये कहानी मानसरोवर भाग 6 प्रेम प्रसून कहानी संग्रह में शामिल है। प्रायः अधिकांश साहित्य सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पाठकगण उनके पास श्रद्धापूर्ण पत्र भेजने लगते हैं। कोई उनकी रचना शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्विचारों पर मोहित हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से ये सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर हृदय कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य प्रेमी से ही पूछना चाहिए।
1: त्रिवेदी जी, ये डाक में किसी उमापति जी का पत्र आया है आपके नाम।
2: किसका? उमापति? हाँ, लाइए लाइए, दीजिए। अच्छा मुनीम जी।
3: हाँ जी।
2: आप लोगों की दृष्टि में मेरी जो रचनाएं साधारण और स्तरहीन है, उनकी प्रशंसा ये कितने अच्छे कवि ने की, जिनकी स्वयं की रचनाएं अक्सर पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है।
1: जनाब क्या लिखते हैं?
2: अरे ऐसी प्रशंसा की है कि हृदय गदगद हो गया। विस्तार से तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझसे स्वयं भेंट करना चाहते हैं? लाइए

वो जरा कलम दवा तो उठाइए, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ। पांचवें दिन कवि महोदय का दूसरा पत्र पहुंचा।

0: आगे लिखते हैं, कृपया अपनी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम पते भी भेजिएगा। मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है, आपकी संतानें कितनी हैं और आपका कोई फोटो भी है, और यदि है तो भेज दीजिए। धन्य है भगवान, अब रमणियां भी मेरे कृत्यों की सराहना करने लगी हैं। ये पहला अवसर है जब मेरी रचनाओं की प्रशंसा किसी महिला ने की है। ये महाशय तो मुझसे खासे प्रभावित है। अजी सुनती हो? अरे मैंने कहा सुन रही हो?
1: आटे में हाथ सने हैं, आ रही हूं।
0: देखिए, ये हमारे एक साहित्य प्रेमी मित्र उमापति का पत्र आया है। देखिए देखिए, ये स्वयं तो हमारी रचनाओं के प्रेमी हैं ही, इनकी पत्नी भी मेरी रचनाओं से प्रभावित हैं। और एक आप हैं, आपके पास तो समय ही नहीं हमारी रचनाओं को सुनने के लिए।
2: अरे इस चूल्हे चौके से फुर्सत मिले तभी तो कुछ सुनूं। और अगर मैं आपकी रचनाएं सुनने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? आप ही को मुबारक हो आपके रचना प्रेमी और उनकी पत्नी।
0: उमापति जी की श्रीमती जी ने मेरे परिवार और वंशावली के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसा बढ़ा चढ़ा कर लिखूंगा कि क्या याद रखेंगे वो। चलो लिखता हूं। मेरे दादा एक रियासत के मैनेजर थे। हालांकि ये बात मैं जानता हूं कि एक नौकर मात्र थे। मेरे पिता जो दफ्तर में क्लर्क थे, उन्हें मैंने दफ्तर का प्रधान अध्यक्ष लिख दिया है। और काश्तकारी को जमींदारी बनाना तो बड़ी मामूली सी बात थी, सो वो भी मैंने कर दिया है। और इस तरह दो सप्ताह और बीत गए, उमापति का कोई पत्र नहीं आया। अश्वनी का महीना और तीसरा प्रहर था, रामलीला की धूम थी, मित्रों की ताश की बाजी चल रही थी।
3: जी हाँ जनाब, क्या काम है आपको, किससे मिलना है?
4: जी आप लोगों में से त्रिवेदी जी कौन हैं?
0: जी कहिए, मैं ही त्रिवेदी हूँ।
4: जी आपने मुझे पहचाना?
0: नागा ढील डॉल, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवरे हुए, सादी कमीज, श्याम वर्ण, गले में फूलों की माला और पैर में फुल बूट और हाथ में मोटी सी पुस्तक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इन महाशय को कहीं देखा है या इनसे कभी मिला हूं। जी माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका।
4: जी मैं आपका अदना सा चाहने वाला उमापति नारायण।
0: अरे उमापति नारायण जी, आप यूं अचानक किस तरह?
4: जी चलिए मकान पर चलते हैं, वहीं सब बताऊंगा।
0: अच्छा,
4: मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ बैठक में हैं, पूछता हुआ चला आया।
0: जी जी आइए चलते हैं, तब तक आप पान इलायची लीजिए, मैं बस अभी आया।
5: ये महाशय कौन है? आपके जानने वालों में पहले इन्हें कभी देखा नहीं।
0: अरे मेरे नए मित्र हैं, मेरी रचनाओं के प्रशंसक।
5: इनसे जरा होशियार रहिएगा।
0: आपका अनुमान गलत है, आप हमेशा आदमी को उसकी सच धज से परखा करते हैं, पर मनुष्य कपड़ों में नहीं दिल में रहता है।
5: खैर ये रहस्य की बातें तो आप जाने, मैंने तो आपको आगाह कर दिया है।
4: भोजन बहुत स्वादिष्ट था।
0: जी वो बस जल्दी जल्दी में बाजार से मंगवाना पड़ा। और सुनाइए, घर में सब आनंद मंगल तो है ना?
4: जी हाँ सब आनंद मंगल, आपका और आपकी रचनाओं का अक्सर ही घर में जिक्र होता रहता है।
0: जी धन्यवाद। जी आप भी तो कविताएं लिखते हैं ना, कृपया कुछ सुनाइए ना।
4: हाँ
6: जीवन क्या है, एक पानी का

0: क्या बुलबुला है जीवन, क्या है एक पानी का बुलबुला है। एक दिन आएगा वो फूट जाएगा, सब बेकार है सब यहीं रह जाएगा। जीवन क्या है एक पानी का बुलबुला है।
1: वाह वाह उमापति जी, क्या स्वर है, क्या शब्दों का चयन है
2: जी। शुक्रिया शुक्रिया,
1: बहुत सुंदर कविता है, बहुत खूब। अच्छा अब रामलीला का समय हो चला है, चला जाए
2: जी बिल्कुल।
1: वापिस लौटकर वापिस अपना कविता पाठ सुनते हैं
2: जी। जरूर
1: आइए।
2: रामलीला का इतना सुंदर मंचन इससे पहले याद नहीं पड़ता मैंने कभी देखा हो।
1: चलिए अच्छा लगा कि आपको पसंद आया, आइए रात्रि भोज कर ले।
2: जी बिल्कुल
1: जी। हाँ उमापति जी बताइए, अचानक कैसे आना हुआ आपका?
2: भाई साहब मैं अपनी पत्नी को लेने कानपुर जा रहा हूँ।
0: वहीं मेरा मकान भी है और जमींदारी भी,
2: और वहीं ससुराल भी है
1: जी।
2: दरअसल जमींदारी से मुझे घृणा है। मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करने की मंशा रखता हूँ और एक मासिक पत्रिका निकालने का मेरे मन में विचार है। वैसे तो मुझे प्रकाशक एक कविता के 1000 देता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये पुस्तिकाएँ मैं अपनी ही लागत पर छपवाऊँ। भाई साहब वैसे तो मेरी धर्मपत्नी एक कन्या विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है।
1: अच्छा है। बातचीत में कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। अच्छा उमापति जी शुभरात्रि।
2: शुभरात्रि।
1: अरे उमापति जी सवेरे सवेरे तैयार होकर बैठे, कहीं जाने का विचार है क्या?
2: जी अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा।
1: अच्छा
2: इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा।
1: अरे नहीं नहीं कष्ट की क्या बात है, निसंकोच कहिए।
2: मैं कल चला तो प्रातःकाल के 4 बजे थे
1: जी।
2: 2 बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए।
1: अच्छा
2: बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा।
1: अरे
2: क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी
1: जी।
2: गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी और कोट उतार कर रख दिया और लेट गया, तुरंत ही नींद आ गई।
1: अच्छा अच्छा
2: मुगल सराय में नींद खुली, कोट गायब, नीचे ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया किसी महाशय ने उड़ा दिए, आखिर सोने की सजा मिल ही गई।
0: कोट में 50 रुपए खर्च करने के लिए रखे थे वे भी उसके साथ उड़ गए। अब क्या कहूं। दरअसल अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो बात वो है कि पत्नी को मैके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे, और फिर तो आप जानते ही हैं कि ससुराल में सैकड़ों तरह के नेकजोग होते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च करने होते हैं, न खर्च करो तो हंसी का बड़ा डर है। मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा।
1: इसकी बातों ने तो मुझे हसमंजस में डाल दिया है, एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं, कहीं फिर से वही दशा हुई तो। अरे नहीं नहीं नहीं, संसार में सभी मनुष्य एक से नहीं होते, ये तो सज्जन पुरुष लगता है, इस समय संकट में पड़े हैं, इस समय ऐसी बातें सोचना मुझे शुभ नहीं देता।
3: अरे अजी सुनती हो?
1: अच्छा उमापति जी आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूं। अजी सुनती हो? तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है?
4: क्यों क्या करोगे?
1: मेरे मित्र जो कलाएं हैं ना, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है ना, लौटते समय देते जाएंगे।
4: तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं।
1: वो
4: सभी संकट में पड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं है रुपए वुपे।
1: अजी दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, उनकी गाड़ी छूट जाएगी।
4: तो कह दो इस समय घर में रुपए नहीं है।
1: देखो ये कह देना आसान नहीं है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं दरिद्र ही नहीं मित्रहीन भी हूँ, नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का भी इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी विश्वास नहीं आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है, इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते, कम से कम अपना पर्दा तो ढका रहेगा ना।

0: ये लो, ये रही संदूक की चाबियां। तुम्हें जितनी बहस करनी आती है ना, उतना ही अगर लोगों को परखना आता तो आज आदमी हो गए होते। ले जाओ, दे दो उसे, लेकिन उधार समझकर मत देना। ये समझ लो कि पानी में फेंक दिए।
1: सातवें दिन उमापति अपनी पत्नी और पुत्री सहित पुनः पधारे। उनकी अच्छी आवभगत की गई। स्वागत में 20 रुपए भी दिए गए। त्रिवेदी जी को विश्वास था कि उमापति जी आते ही उनके 50 रुपए धन्यवाद सहित उन्हें लौटा देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
2: सुनो, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी।
3: तो क्या तुम्हें सचमुच आशा थी
0: कि वो आते ही रुपए हाथ में रख देंगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फिर पाने की आशा मत करना। यही समझ लो कि किसी मित्र की मदद कर दी। लेकिन तुम भी विचित्र आदमी हो।
2: बड़ी लज्जा का विषय है, इनके आदर सत्कार में क्या कमी छोड़ी हमने। अब तो बिस्तरा बांध कर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पैसों का कोई जिक्र नहीं। मैं तो बड़ा ही अपमानित सा महसूस कर रहा हूं। तुम ठीक कहती थी, मुझे वाकई आदमी की परख नहीं है।
4: त्रिवेदी जी, चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बात मन में है जो आपसे कहना चाह रहा हूं। समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे कहूं। दरअसल वो बात यह है कि, और मुझे दुख भी इस बात का है कि मैं इस बार भी आपके रुपए नहीं दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो तहसील वसूल करने के लिए गांव गए हुए थे और मुझे इतना अवकाश नहीं था कि गांव तक जाता। क्या है कि गांव तक रेल का रास्ता नहीं है, सो बैलगाड़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर सीधा ससुराल चला गया और वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए अगर नहीं मिल जाते तो यहां तक आना भी बड़ा मुश्किल था। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपसे कहूं कि वो, क्या है कि अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। अगर आप मुझे 25 रुपए और दे देते तो मैं आपको वहां जाते भेज दूंगा, विश्वास कीजिए। इस समय मेरे पास 1 का किराया भी नहीं है।
2: जी मैं तो आ रहा है कि टका सा जवाब दे दूं, पर क्या करूं, इतनी अशिष्टता मुझसे हो नहीं सकेगी।
1: बड़ी मुश्किल से मन मार कर त्रिवेदी जी ने पत्नी से पैसे लिए। पत्नी ने भी बिना किसी नानुकुर किए रुपए दे दिए। त्रिवेदी जी की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उमापति जब चलने लगे तो त्रिवेदी जी शिष्टाचार के नाते ही सही उन्हें सड़क तक छोड़ने भी नहीं गए। 1 हफ्ते के बाद उमापति जी का पत्र आया कि किसी कार्यवश बाहर जा रहे हैं, रुपए लौट कर भेज देंगे। लेकिन इसके बाद ना तो रुपए आए और ना ही कोई खत। त्रिवेदी जी खत और रजिस्ट्री लिख लिख कर थक कर बैठ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो उनकी धर्मपत्नी ने कहा था वही सच था।
2: इस कपट भरे व्यवहार का मुझ पर बुरा असर पड़ा। मैं इतना उदार नहीं कि अपने ऋण को भूल सकूं। अरे महीनों सिर खपाता हूं, कलम खिसता हूं, तब जाकर कहीं नखत नारायण के दर्शन होते हैं।
5: त्रिवेदी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है, स्वयं को कंपोजिटर बताता है।
2: ठीक है, अंदर भी।

0: भेज दीजिए। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: महाशय, मैं बिहार के एक संपन्न परिवार से हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, मित्रों की संगति में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे घर वालों ने किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया। इस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम की सख्त आवश्यकता है।
0: ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 15 रुपए मासिक से अधिक नहीं दे सकूंगा, और तुम्हें कंपोजिटर का कार्य करना होगा।
1: जी मुझे स्वीकार है।
0: ठीक है। मुनीन जी।
2: जी।
0: ये लड़का आज काम पर नहीं आया, कुछ कहकर गया था क्या आपसे?
2: कल से बुखार बता रहा था, शायद इसी वजह से ना आया हो।
0: भाई बड़ा सलीके वाला लड़का है, अपना काम बखूबी करता है, मुझे तो बहुत पसंद है।
2: देखिए देखिए त्रिवेदी जी, वो चला आ रहा है।
1: नमस्ते सर, माफी चाहता हूँ, आने में देर हुई। दरअसल कल से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर बुखार से तप रहा है, शायद आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकूँगा। यदि आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दें तो मैं घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपए का प्रबंध करके भेज दूंगा।
0: ये तो वास्तव में बीमार है, मैं इससे भली भांति परिचित हूं, और ये भी जानता हूं कि वो यहां रहकर कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकेगा। हाँ, इसे सचमुच सहायता की जरूरत है, मगर मुझे शंका है कि कहीं ये भी रुपए हजम ना कर जाए। जब एक विचारशील सुयोग्य पुरुष धोखा दे सकता है, तो ऐसे अर्धशिक्षित नवयुवक से कैसे आशा की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा? भाई मुझे तुम्हारी दशा पर बेहद दुख है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, बिल्कुल खाली हाथ हूं, मुझे खेद है।
1: आप चाहे तो कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर सकते हैं, मैं आपके रुपए अवश्य भेज दूंगा।
0: यहाँ तुम्हारी नियत साफ है, लेकिन घर पहुंचकर भी यही नियत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है? नियत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं, ये भी कौन जाने। रुपए तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अब देखो, इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास आज रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती हो वो ले सकते हो। ये तो चला गया, लेकिन क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने निर्णय पर स्थिर हूं। अरे मैं कहां का इतना धनी हूं जो यूं पैसे पानी में फेंकता फिरूं।
2: सुनो बेटा सुनो, त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है क्या?
1: पंडित जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा के पैसे भी नहीं हैं, मैं घर वापस लौट जाना चाहता हूँ, इसलिए मालिक से कुछ रुपए उधार लेने गया था, लेकिन रुपए नहीं मिल सके।
2: तो फिर क्या करोगे? जितने दिन तुमने काम किया है उससे तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। अरे पहले तुम ये रोना बंद करो, लो ये 15 रुपए रखो और तुरंत घर चले जाओ, जाकर सबसे पहले अपना इलाज करवाओ।
1: नीम जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकूंगा, घर पहुंचते ही मैं रुपए वापस भेज दूंगा। नमस्ते।
0: अरे मुनीम जी, ये लड़का क्या कह रहा था, कुछ कहकर गया है क्या?
2: हाँ, वो बता रहा था कि घर जाना चाहता है, मुझसे जो मदद बन पड़ी मैंने कर दी।
0: अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये अच्छा ही हुआ। चलो मुझसे ना सही, किसी और से ही सही, मैं भी तो यही चाहता था कि इसकी मदद हो जाए। अब मेरे दिल का बोझ हटा, ऐसा नहीं।

0: है कि मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता था। लेकिन ये सब मेरे उन कवि मित्र के कपट का परिणाम है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। वरना क्या मेरे पास इस लड़के को देने के लिए 15 रुपए नहीं निकलते? मैं अपनी रचनाओं और आलेखों में बड़े बड़े उपदेश दिया करता था, दया, मनुष्यता, सद्व्यवहार, और मौका पड़ने पर मैं स्वयं ही साफ बच निकला। अरे मुझसे अच्छे तो ये मुनीम जी निकले जो मेरी रचनाओं को पढ़ पढ़कर इनका जीवन ही बदल गया है। गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। चलो ये भी अच्छा है, मेरे लेखों का मुझ पर ना सही, दूसरों पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। भले ही चिराग तले अंधेरा सही है, पर उसका प्रकाश तो फैल रहा है। और कहीं मुनीम जी को पैसे वापस नहीं मिले तो, जिसकी मुझे पूरी आशा है। तो फिर खूब छकेंगे। महाशय को आड़े हाथों लूंगा। किंतु त्रिवेदी जी की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। हां, एक काम उन्होंने अवश्य किया, इस संपूर्ण घटना को आलेख के रूप में एक पत्रिका में छपवा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चौथे ही दिन उनके दरवाजे पर पोस्टमैन खड़ा था।
1: पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर है।
0: मनी ऑर्डर? अरे ये तो उमापति ने भेजा है। अरे सुनती हो, ये देखो उमापति जी ने 75 रुपए वापस भेजे और क्षमा लिखा है।
2: अच्छा, इन्हें ले जाकर संभाल कर संदूक में रख दो। तुम इतने लोभी हो, मुझे तो पहली बार मालूम हुआ। कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज नहीं लौटा पा रहा है तो अवश्य ही वो विवश है। बार बार तकाजा करके उसे लज्जित करना कोई भल मनसाहत नहीं है। अरे जब तक किसी व्यक्ति का पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो जाता, तब तक वो किसी को धोखा नहीं देता। मैं इन रुपयों को तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक ये पता नहीं चल जाए कि रुपये भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ।
0: उसके बाद उमापति का कोई पत्र नहीं आया जिससे ये पता चले कि रुपए भेजने में इतना विलंब क्यों हुआ। पर मैं इस समय ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार नहीं था। डूबा धन मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की जादूगर को सलाम की 11वीं कड़ी। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय और सतीश कक्कर। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

संग्रहालय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना जादूगर को सलाम धारावाहिक का 11वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आईपीएल में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युव वाणी। योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा गर्मियों में रखें स्वास्थ्य की देखभाल। इसके अलावा क्रम जीवन

नालुक में आज का विषय है खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल जरूरी है। दोस्तों साथ ही आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। साथियों क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। साथियों संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। हर वर्ष यह सप्ताह विभिन्न विषयों के साथ मनाया जाता है ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पैदल यात्री हो, चालक हो या साइकिल सवार, सभी को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथियों आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं, जिनमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में इस सप्ताह का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों सड़क सुरक्षा का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत भी है। अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने के कारण होती है। यदि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे जागरूकता अभियान, रैलियां, कार्यशालाएं, स्कूलों में कार्यक्रम। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन भी सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां सड़क परिवहन बहुत अधिक उपयोगी है, सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं, जिनका मुख्य कारण नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों युवा वर्ग इस अभियान में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। वे न केवल खुद नियमों का पालन करें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्कूल और कॉलेज सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं ताकि बच्चों में शुरू से ही सही आदतें विकसित हो सकें। दोस्तों हम कह सकते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें और नियमों का पालन करें तो हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह हमें यही संदेश देता है कि सुरक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार सड़क सुरक्षा सप्ताह न केवल एक अभियान है बल्कि यह जीवन को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आइए साथियों अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय गर्मियों में रखे स्वास्थ्य की देखभाल पर चर्चा करने का। दोस्तों गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खानपान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में बदलाव करके हम इस मौसम में भी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले गर्मियों में पानी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। दोस्तों गर्मियों में खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तला भुना मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इसके बजाय हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, सलाद का सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। साथ ही भोजन समय पर करना और अधिक देर तक भूखे ना रहना भी जरूरी है। दोस्तों इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक होता है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू, हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो एक गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय में खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी है तो सिर को ढककर रखें, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और धूप का चश्मा या छाते का प्रयोग करें। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों साथ ही स्वच्छता का ध्यान भी गर्मियों में बहुत जरूरी है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, हाथों को बार बार धोना चाहिए। बाहर का खुला और अस्वच्छ भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों गर्मियों में पर्याप्त नींद और आराम भी जरूरी है। अधिक गर्मी होने के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही हल्का व्यायाम और योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के कारण चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहें, सकारात्मक सोच रखें और ठंड

जगहों पर समय बिताएं, संगीत सुनें, किताबें पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिए, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें, स्वच्छता का पालन करें, तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। साथियों, आइए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल होना जरूरी है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य के समग्र विकास के लिए खेलकूद और पढ़ाई दोनों का समान महत्व है। केवल पढ़ाई करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रह जाता है। वहीं केवल खेलकूद पर ध्यान देने से शिक्षा का अभाव रह जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। दोस्तों पढ़ाई का महत्व समझना जरूरी है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, सही और गलत में अंतर करना सिखाती है और जीवन में सफल बनने का मार्ग दिखाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में अच्छी शिक्षा ही एक मजबूत भविष्य की नींव रखती है। इसलिए छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर खेलों का भी उतना ही महत्व है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। यह हमें अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण सिखाता है। खेल खेलने से मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। जो छात्र नियमित रूप से खेलते हैं वे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है। यदि कोई छात्र केवल पढ़ाई करता है और खेलकूद से दूर रहता है तो वह जल्दी थकान महसूस करता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वही जो छात्र केवल खेलकूद में रुचि रखते हैं और पढ़ाई को नजरअंदाज करते हैं वे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। खेलकूद और पढ़ाई के बीच तालमेल बनाने के लिए समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने दिनचर्या में पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि दिन में कुछ समय पढ़ाई के लिए और कुछ समय खेलकूद के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। इससे ना तो पढ़ाई प्रभावित होगी और ना ही खेलकूद। दोस्तों आज के समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां खिलाड़ी और विद्यार्थी दोनों ही क्षेत्रों में सफलता छात्र प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सही योजना और मेहनत की जाए तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि खेलकूद और पढ़ाई दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बीच संतुलन बनाकर ही एक स्वस्थ, सफल और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हर छात्र को चाहिए कि वह अपने समय का सही उपयोग करे और खेलकूद और पढ़ाई दोनों को समान महत्व दे।

0: अभी युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
8: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर अपना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
10: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
9: बुद्धू सुधर जा।
10: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
10: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
8: ये देख कैसे।
12: हैप्पी बर्थडे बाय।
8: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
12: हमेशा शॉपिंग।
8: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
13: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: I know ma,
10: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
14: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है
15: बदल। दादी कौन सा प्लांट है?
16: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
17: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
15: दादी रुको, सिंक में क्लिक मत करना।
17: क्यों?
15: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
17: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
6: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए आजाद फिल्म का गीत। अरिजीत सिंह और हंसिका पारीख ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

धूमधाम। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। विशाल ददलानी ने इस गीत को गाया है। सिद्धांत कौशल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है क्लिंटन सेरेजो और बैंका गोम्स ने।

अगला गीत नीति मोहन और पपुन की आवाजों में है। तुमको मेरी कसम फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है श्वेता बोथरा ने और संगीतकार हैं प्रतीक वालिया।

श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं छावा फिल्म का गीत हीरल विरदिया और एआर रहमान के स्वरों में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है एआर रहमान ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत धुरंधर फिल्म से, शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और शुभदीप की आवाज़ें, इरशाद कामिल और साहिर की लुधियानवी की शब्द रचना है, संगीतकार हैं शाश्वत सचदेव और रोशन।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुँचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।

कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन और महापूजा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पीएम जनधन योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री

डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी और आईपीएल क्रिकेट में आज का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चेन्नई में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है फिल्म संगीत के लिए, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। अनिल पांडे के लिखे गीत को संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

आइए बागी फिल्म का गीत सुनते हैं अभिजीत और साथियों की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है आनंद मिलिंद ने।

जुबिन नोटियाल और विवेक हरिहरन की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फतेह फिल्म का गीत। गीतकार मनदीप खुराना और संगीतकार विवेक हरिहरन।

जाग उठा इंसान फिल्म का गीत सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार राजेश रोशन।

मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत

अगला गीत सुहाग फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह और ने इस गीत को गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

अमित त्रिवेदी की आवाज़ों में इरशाद कामिल का लिखा और अमित त्रिवेदी का ही संगीतबद्ध किया गीत सुनते हैं। फिल्म है ऊंचाई।

क्षमा कीजिए श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं कुर्बान फिल्म से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ऊंचाई फिल्म का गीत। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, स्वर और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

अमित त्रिवेदी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलग वेत्री कडगम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण के लिए।

पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम सुनवाएंगे कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान छिंदवाड़ा केंद्र का होगा। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 9:30।

0: 10 बजे सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में विद्वान श्री डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आप सुनेंगे 7:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इस कार्यक्रम में आज विषय है जायद उद्यान की फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर होगा सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 9:15 पर लोक संगीत में सुनिए राधेश्याम विश्वकर्मा के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। उर्दू कार्यक्रम आयना में 9:30 पर सुनेंगे मिर्जा मुमताज बेग की तकरीर सर सैयद अहमद खां के अदबी कारनामे। इसके अलावा सुनेंगे अयाज कमर का कलाम। जिले की चिट्ठी प्रसारित करेंगे 10 बजे। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोदवादन हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। राग है भैरवी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 12 बजे, दोपहर 2:30 और रात्रि 10 बजे। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए जादूगर को सलाम धारावाहिक की 12वीं कड़ी। 1 बजे सुनिए स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम योगदान भोपाल केंद्र का। लोक संगीत में 1:30 पर सुनेंगे पुष्पलता शर्मा और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। सुगम संगीत में 1:45 पर कल हम आपको सुनवाएंगे प्राची कोकण ठानकर के गाए गीत और भजन। कल शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा योगदान भोपाल केंद्र का होगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए 6 बजे। 6:40 पर होगा समसामयिक विषय पर केंद्रित कार्यक्रम आजकल। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय रहेगा 6:45। 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। पब्लिक स्पीक का समय रहेगा 9:30। ये कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा। 10:30 पर राग रजनी में कल सुनिए पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का सरोदवादन, राग होगा कामोद। कल शाम 7:21 पर भोपाल केंद्र से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण है क्रम लोक रंग। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पैसा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: पापा, लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ।
6: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंडा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर। और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगात होगी, 5000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश के लिए। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश के भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और भारत के भी 3 पुरस्कार मिले।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात

0: गई है।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यदि संसदीय क्षेत्र में बनेगी, 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1,059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करेगा।
3: गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी।
0: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किया जाएगा मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंडा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

चौपाल के सुनैया सबे भैया बहनीन काही ससी बहनी के राम राम। देखी मनई के जीव जामा के कौनो ठिकाना नहीं रहा है, का जानी के खा कब कौन बेरामी घेर ले। अजो थोड़को लापरवाही भय त बेरामी घेरी लेती, कईक बेरामी ऐसन होती है जौन साइड देख के होती हैं, पर कुछ ऐसनों बेरामी होती हैं जौन गंदगी साफ सफाई के कमी इन सब के कारण से होती हैं। ऐसे देखी मनई का हमेशा साफ सफाई स्वच्छता केर विशेष ध्यान दे का चाही। और देखी एहिन के निता कई कार्यक्रमों चलाए जाते जैसा ग्रामीण स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जौन है उखर चरण दूसर केर एक मुख्य हिस्सा आए। एकर उद्देश्य यह है कि गांवन का ही ODF प्लस बनाई के कचरा केर वैज्ञानिक प्रबंधन की जाए, गील और सूख कचरा जौन है ओखा अलग अलग कई के कंपोस्टिंग के माध्यम से बीमारिन का दूर कई के मनई के जीवन का निकाहा बनावा जाए, खुशहाल बनावा जाए, स्वच्छ बनावा जाए, साफ सुथरा बनावा जाए। एमा देखी का कीन जात है कि सूख और गील जौन कचरा होता है ओखा अलग अलग कीन जात है। गील कचरा ओखा कहा जाता है जौन रसोईया घर के कचरा होए, और सूख कचरा जौन है ओमा प्लास्टिक कागज यह सब आवत है। त एखर जौन सूख कचरा होत है एखर पुनर्चक्रण कराब। गांवन में ही देखी मनई पशुअन के गोबर जौन होत है ओखा कूड़ा करकट भा जौन ओखा सबका गड्ढा एकठे बनाई के जौन मेर से कंपोस्ट खाद बनावत है, उहाय मेर से जौन गील कचड़ा होत है ओहू केर कंपोस्टिंग कैके ओहू का जौन है एक मेर से जैविक खादी बनाई जाती। एखा माने कहा का कि गील कचड़ा का ही जैविक खादी में ही बदला जात है। अब यह मेर से जौन प्लास्टिक कचरा है ओखर प्रबंधन के निता कईक जौन इकाइयां हैं उन्हीं स्थापित करब जहां प्लास्टिक का इकट्ठा कई के ओखर फिर से उपयोग करे के निता पुनर्चक्रण कीन जात है। यह मेर से कहा है कि जौन तरल अपशिष्ट होता है ओहू के प्रबंधन कीन जात है। एमा जैसे नाली नर्दा के जौन पानी होता है ओखा साफ करे के निता सोखता गड्ढा फिल्टर सिस्टम के उपयोग कीन जात है, जेमा से पानी के साफ सफाई होती और गंदगी जौन है वह कम हो जाती। तो देखी यह मेर से जो मनई चाहे त स्वच्छता और साफ सफाई में आपन योगदान दे सकत है, अब बहुत कुछ बेरामीन से बची सकत है। बस जरूरत यह बात की है कि मनई खुदा हो सूख गील कचरन का अलग अलग करके रखे रहा है। और आजकल तो देखी कचड़ा गाड़ी औती है तो मनई का चाही कि उनमा डाले एक योकई न फेंकए, काहे कि देखा जाए कईक बेरामी जौन है गंदगी से होती, चाहे गंदा पानी हो चाहे घरे के आसपास गंदगी माही मच्छर माछी बहुत कभिन भिनात रहा थे मैं। और देखा जाए तो देखी जब घर द्वार निकहा साफ सुथरा रहा था तब नीक लागत है, चाहे घर द्वार हो और चाहे अपन खुद के शरीरा हो। ऐसे मनई का हमेशा साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा का चाही। और देखी जब साफ सफाई रही तब मनई के जीव अलुकय हलुकस लागत है, मन प्रसन्नस रहत है। और देखी अपने हियाँ कहा है कि जब मनई कौनो शुभ काम करत है तब मनई कहा था कि कलसा जलाए लय, कलसा जलाए से माने एक मेर से मनई कहा था कि शुभता मानी जाती शुभ काम के शुरुआत। तो काहे ना यस मैं देखी काजो ब्याह हो रहे हैं अभी तो है एक आध दो तीन दिन लगन, तो काहे ना मनई सुने यह कलसा गीत ललिता सिंह और साथिन केर गाबा।

क्लस्टरिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसान भैया बहनी, हम पांच देखी अलग अलग रोज मेर मेर के कार्यक्रम लेके आई थे। जैसा कि देखी आज हुआ इतवार, यह रोज जौन है हम पांच जौन है लई थे बघेली पॉडकास्ट बत कहाँ आकाशवाणी के 90 बरिस पूर होए के अवसर मा हम पांच गांव समाज मनई के स्वास्थ्य जैसा कई अग विषय माही बत कहाँ करी थे। आज के बत कहाँ मा हम चर्चा करब लू से बच्चन के सुरक्षा। तेज गर्मी और लू के मौसम मा छोटवार जौन लड़का बच्चा होते उनके स्वास्थ्य के विशेष ध्यान रखे का चाही। यह विषय मा हम माने शशि बहिनी डॉक्टर ज्योति सिंह से बातचीत करब कि छोटवार लड़का बच्चन का लू से कैसन बचावा जाए। देखी गर्मी के मौसम तो चलिन रहा तो यह गर्मी के मौसम मा उनके खान पान ओन्हा लत्ता और दिनचर्या मा कौन कौन बातन के ध्यान रखे का चाही। अमान ले फेराओ जो लू लगी जाए तब महतारी बाप का ही

0: देखी इतनी सारी अहमद गर्मी पड़ रही ही अलुआ चल रही त लड़का छे हर का लू से बचावे के नीता एहिन के संबंध में ही बतकहाँ करी थे डॉक्टर ज्योति सिंह से अपना शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं और कईक बरिस तक श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ाई वाले लड़का बच्चन का पढ़ाए हैं। डॉक्टर साहब ये बताई कि इतनी सारी तेज गर्मी अल्लू के असर बढ़ रहा है तो छोटवा लड़का बच्चन का लू लागे के खतरा अधिकहा काहे रहा था।
1: बहुत ने कहा सवाल पूछे न अपना
0: जी।
1: पहले हम लोगन के जमाने में गर्मी तो पड़ता ही रही और हम लोग खूब गांव जावा करी।
0: हाँ।
1: सब लोग गांव में रहे और लड़का बिटिया आमा के बगिया में खेलत रहे।
0: हाँ। तो
1: बगारे में खेले कबहू लू न लागे।
0: हाँ।
1: जब तक कि बहुत कोनो झंझट न हो जाए पानी न पिए तब भर लू नहीं लागत रहे।
0: हाँ।
1: पर अब हम लोग देखी थे कि धीरे धीरे जो वातावरण के तापमान है पहले 35 डिग्री 36 डिग्री भा फिर 40 भा फिर 45 भा और 50 पार हो जाता है। तो ये जो 50 डिग्री टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा है। या आदमी के शरीर सहलायक तापमान या न हो कबो हम पचे का करें कि लड़का बिटियन का लेके बाजार चले गए यही मौसम में सब शादी ब्याह भागवत पूजा पाठ को जानी का होता है। और मेहरी अपन लड़का छोड़ कर ले ही अपन तो ओढ़ ले ही लड़का का न उड़ाई ठीक से और लड़का फिर बगता रहा थे पूजा पाठ में बैठ गए लड़का भाग रहे हैं पानी के कोनो ठिकाना नहीं आया। तो इन कारण से लू बहुत लागत थी। अब
0: अच्छा तो अपने ये बताई कि गर्मी के मौसम में लड़का बच्चन का घरे के बहिरे खेला समय का सावधानी रखे का चाहिए।
1: पहली सावधानी तो यह रखे कि दोपहर में 11 बजे से लेके और सांझ के 4-4:30 बजे तक घर से बाहर न भेजे।
0: अच्छा
1: घर के भीतर खेले बच्चे। और दूसरी यह सावधानी रखा है कि पानी खूब पियावत रहे।
0: हुँ, हुँ.
1: और जैसे अपने जमाने में पहले वो रहा कि भाई शरबत पियत रहे शिकंजी पियत रहे शरबत में नींबुआ नमक डाल के पियत रहे माठा पिया जात रहा।
0: हुँ, हुँ.
1: तो खूब पानी पियावे खूब माठा पियावे खूब शिकंजी पियावे तो पान लू नहीं लागे।
0: हुँ.
1: और तीसरा ध्यान रखे कि शरीर ढक के निकले।
0: अच्छा
1: तो खुला शरीर में लड़कन का बाहर न भेजे चल रही है तो पूर बाही के कपड़ा सूती बढ़िया मोट कपड़ा पहना दे
0: मोटवार
1: तो न तो फिर लू न लगी।
0: अब मान ले जो लड़का बच्चन का लू लगी नस गए चक्कर उल्टी आवेला या तेज बुखार जैसा लक्षण दिखाए तो महतारी बाप का तुरंत का करा चाहिए।
1: अपना सही पूछे निया और लक्षणों सही बताएं। काहे से लू में सबसे पहले लक्षण यह होता है कि बुखार तेज चढ़ जाता है प्यास लागी लड़का का उल्टी हो लागी पेटे में पीड़ा हो लागी और पसीना न आई यह बहुत मुख्य लक्षण है कि पसीना नहीं आवे हम शरीर लाल पड़ जाये।
0: हाँ।
1: और तेज बुखार रही। अब यह मेरे के लक्षण आ जाए तो पहले तो यह है कि भाई घर के भीतर कई ले लड़का का ठंड जगह में रख ले है ना और पानी के पट्टी की ही जा सकती।
0: अच्छा
1: पर वो का ठंडे पानी के न करे।
0: हाँ।
1: कुनको ना पानी कह ले कुनको ने पानी के पट्टी करके बुखार उतारे। और आजकल तो बहुत सरकार छूट दे है घर घर में पैरासिटामोल के दवाई रहता है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो
0: हाँ।
1: पैरासिटामोल के सिरप हो नहीं तो
0: हाँ।
1: गोली हो तो गोली चौथाई गोली खवा दे।
0: अच्छा
1: जो सिरप हो तो एक चम्मच सिरप पिला दे 5 साल से छोट लड़कन का।
0: अच्छा
1: है ना। और तीसरा ख्याल रखा है बताए खूब पानी पियावे का है सादा पानी नहीं दे का है बल्कि ओआरएस वाला पानी नारियल
0: हाँ।
1: के पानी दाल के पानी पातर खिचड़ी माठा।
0: अच्छा।
1: या मेर के खूब पियावे।
0: कई दर की लड़का छेहर घामे में खेल के जब भीतरे आवत है तब बहुत थके अस दिखाते इतने साई महतारी बाप का क्या ध्यान रखे चाहिए।
1: तो वह जो थकान लागे थी वह एहिन कारण से है कि खूब पसीना बहा।
0: हाँ।
1: पसीना ऐसा नहीं है कि पानी भर निकल रहा है उमा शरीर में जो तरह तरह के सोडियम पोटेशियम तमाम होते ना दोनों निकल जाते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इनसे लड़का बहुत थक जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है तो थोड़ी देर ठंडा लें थोड़ का हाथ मुंह धो लें फिर उनका कोनो ठंड चीज पिए के जो हम अपना का बताए न
0: हाँ, हाँ,
1: इनमें इस कोनो चीज जरूर दे।
0: अच्छा,
1: और मीठ चीज दे थोड़ा थोड़ा का चुटकी भर नमक डाल के दे तो निकाह फिर लड़का स्वस्थ हो जाए।
0: अच्छा और गर्मी के मौसम में लड़का बच्चन के कपड़ा दिनचर्या कैसन हो चाहिए जैसे वो स्वस्थ रहे।
1: साधारण में तो पातर कपड़ा पहनावे सूती कपड़ा और कम कपड़ा पहनावे जो बाहर निकले कहो घरे से तब फिर मोट कपड़ा पूरी बाही के

0: पूरा ढक के टोपी लगाए के और सब निकाल के उड़ाए के तब निकले जब उन्हें गर्म हवा ना लागे या गर्म हवा से फिर लू लागे के खतरा होता है।
1: गांवन में कई दर की का होता है कि लड़का बच्चा बिना टोपी के बिना चप्पल के घामे में निकल जाते हैं, तब हम तारी बाप का कौन छोट छोट बातन के नीता उन्हें छोट बाल लड़का बच्चन का समझावे।
0: अब जो लड़का बाहर खेले जा रहे हैं भैया तो पता है रहे चाहिए कि मुंह ढक के निकले का है और कपड़ा पहन के निकले का है, अधूरे कपड़ा में बाहर न जाए, निकहा कपड़ा पहने रहे, टोपी लगाए रहे और तब खेले जाए। और टाइम के थोड़ा ध्यान तो महतारी बाप का रखा है कपड़ी
1: की बुझाने
0: उतनी जिम्मेवारी कपड़ी।
1: अंत में अपना यह बता दे कि गांव गमई के जो हमारा श्रोता है सुनैया भैया बहनी है गर्मी और लू से बचे के निता कौन सरल घरेलू उपाय करें या अपना कुछ सलाह दे
0: या निकाह पूछे न अपना हमहू को सुधी आए गए। एक तो प्याज प्याज के बहुत उपयोग करें, प्याज खाबो करें, प्याज जेबा में डारे और बुखार चढ़ा हुए तो हम तो यह दिखे हैं कि जो ककरी में प्याज रख ले बुखार उतरता आँखी से दिखे हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत जल्दी उतर जाते हैं तो यह करे चाहिए। माठा खूब पियत रहे और उनके अलावा सेतुआ अब बिसर जाई थे हम लोग सबको बिसर गन के सेतुआ का रहा तो सेतुआ जरूर पिए।
1: अच्छा।
0: गर्मी में चाहे बड़े हुए चाहे लड़का हुए दिन में एक बार दो बार जरूर सेतुआ घोर के पिए ये बहुत फायदा करत है।
1: अच्छा और डॉक्टर बहनी अपना से एक बात और पूछा चाहिए थे कि यह वरिष आकाशवाणी के 90 वरिष पूर हो रहे हैं तो गाँव में लड़का बच्चन के स्वास्थ्य से जुड़ी जनवही का मनई तक पहुँचावे माही आकाशवाणी के भूमिका के बारे में अपना कुछ बताई।
0: देखिए हम पचे तो हैं पुराण मनाई
1: हाँ।
0: तो हम पचे तो आकाशवाणी देखे हैं
1: हाँ।
0: हम पचे टीवी नहीं जानत रहे तो तबे तो आकाशवाणी जौन कुछ जानकारी देश में हो विदेश में हो छोट छोट ट्रांजिस्टर रेडियो लेके सब लोग बैठ रहे हैं और सुनत रहे चाहे वह कमेंट्री हो चाहे लड़ाई के सूचना हो चाहे प्रधानमंत्री के भाषण हो कौन चीज हो दुकाने में रेडियो लगाए अपना का लोग दिखात रहे सब जगह आकाशवाणी सुनत रहे
1: मेर मेर के,
0: मेर मेर के और कितनी जानकारी हम लोगन के याद है टीका के न्यूट्रिशन के सब जानकारी हम लोग आकाशवाणी में देते रहे। और रीवा आकाशवाणी के कुछ कार्यक्रम तो रहे जैसे घर आंगन रहा चौपाल रहा इतना लोग सुना करे की बिल्कुल टाइम जब टाइम आवे तो अपन काम छोड़ के सुनने लगे। अब टीवी बग रहा है तो ऐसे रेडियो के काम नहीं खत्म भा अब तो हम बल्कि यह देखे लगे धीरे धीरे लोग टीवी कम देखते हैं रेडियो ज्यादा सुनने लगे फिर से वह प्रथा चालू हो गए है तो एक अचलत रहे चाहे निकाह के और हमारे बहुत शुभकामना है कि जैसे 90 साल पूर्व है उसे 100 हो 200 हो बहुत साल तक यह चलत रहे और सब लोगन का हम लोगन का तो बड़ा प्रेम है आकाशवाणी से बहुत एकदम पुरानी याद आ जाती है।
1: डॉक्टर ज्योति सिंह बहनी अपना बहुत निगही जन वही दी है स्वास्थ्य से जुड़ी छोटवाल लड़का बच्चन का लू से बचे के उपाय बताएं अपना का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते अपनों का।
2: तो किसान भैया बहनी चौपाल कार्यक्रम के भीतरे बघेली पॉडकास्ट जेमा गर्मी और लू के मौसम मा बच्चन के सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातन मा चर्चा की हैं। आकाशवाणी के 90 बरिस पूर होय के अवसर मा हम पांच कईक उपयोगी और मनई का जागरूक करे से जुड़े विषयन मा अपना पांच के बीच लावत रहा अपना पांच या कार्यक्रम का न्यूज ऑन AIR एप मा घाल सुन सकी थन और आपन प्रतिक्रिया जौन है वह हम पांच का भेज सकी थन आकाशवाणी रीवा feedback@gmail.com तैया अपना का बघेली बत कहाँ सुनायन और अब सुनी थैन एक ठे और लोकगीत नचनहाई मालती विश्वकर्मा से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: देखी गर्मी के मौसम में कई एक जगह पानी के तब बहुत ही किल्लत हुई जाती, जबकि पानी जीव के आधार आए, एके बिना ता जीवन के कल्पना ही नहीं कीन जा सके। का मनई का पेड़ पौधा जीव जंतु कोहू पानी के बिना जिंदा नहीं रह सके। ता आई पानी के महातिम का बतावे वाला यह गीत सुनी थे।

अभे मनई रामचरण वर्मा के गावा या विकास गीत सुनीस। अब देखी होती चले के जूना, तब पता बता दीन जाए जौने सुनैया भैया बहनी हरे चिट्ठी पाती दें त लिखी पता। चौपाल कार्यक्रम द्वारा क्रेन निदेशक आकाशवाणी पिन कोड 486001 रीवा मध्य प्रदेश। तो देखी यह पता पर रही अपना पचिन के पाती के परिखाओ। अब आज्ञा दे चौपाल केर सुनैया सबै भैया बहनिन काही ससी बहनी के राम राम, जय जवान जय किसान।

0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
1: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
0: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
1: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं, उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
0: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
1: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
0: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत गाजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
0: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी।

0: मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
1: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
1: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
0: कर्नाटक और तेलंगाना की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का।

0: और स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, कोविड 19 के दुष्प्रभावों से हुई अपार जनधन की हानि से हम सभी भली भांति परिचित हैं। कोरोना महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके दुष्प्रभावों से अछूता रहा हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी किसी न किसी तरह से इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। रोज कमाने खाने वाले व्यवसायों और व्यापारियों पर कोविड काल में हुए लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तरह से उनके सामने रोजी रोटी का, जीविकोपार्जन का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पुनः जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, या कहें कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर छोटे व्यवसायों से जीवन यापन करने वाले लोगों को गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध करवाकर एक निर्धारित राशि उन्हें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है, जिससे इन पथ विक्रेताओं का व्यापार व्यवसाय बढ़े और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, इसकी प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इसके विभिन्न पहलुओं पर हमें जानकारी दे रहे हैं जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा में पदस्थ सिटी मिशन मैनेजर श्री उमेश प्यासी जी।
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएम स्वनिधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। यह उन गरीब लोगों के लिए है जो रेहड़ी पटरी में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, रोड साइड्स में अपने जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह भारत सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। पान ठेला वाला हो गया, गुपचुप हो गया, सब्जी वाला हो गया, छोटे मोटे बुटीक्स वाले हो गए, छोटे किराना दुकान के लोग हो गए, ये उसके लिए पात्र हितग्राही होते हैं। हितग्राहियों का जो सिलेक्शन है, हम लोग पूरे जिले में हमारे जो नगरीय निकाय हैं बाढ़ मुरहरी के माध्यम से और माननीय पार्षदों के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से और हमारा जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पात्रता अनुसार बताते हैं कि ऐसे हितग्राही आप यहाँ हमारे पास भेज सकते हैं इस योजना से लाभान्वित होने के लिए। यह योजना 3 चरणों में लागू है। प्रथम बार जब कोई हितग्राही होता है तो उसे हम 15,000 का लोन शासन के माध्यम से दिलवाते हैं। 15,000 का लोन उसे पूरे 12 माह में पटाना होता है। यदि वह नियमित पटाता है, 12 माह के बाद जब वह पटा देता है तो एनओसी लाता है हमारे पास में, फिर उसको हम 25,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। 25,000 को उसे 18 माह में पटाना होता है। यह पूरी तरह से एक तरह से लोन है वह गरीब परिवार के लिए जो बड़े बड़े शाहूकारों के पास में जाता है और अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज में पैसा इकट्ठा करता है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से उन गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से यह ऋण उपलब्ध कराते हैं। 25,000 की राशि को वह 18 माह में जब पूर्ण कर लेता है, इसके बाद उसे हम 50,000 की राशि देते हैं। 50,000 की राशि को उसे 36 माह में पूर्ण करना होता है। और आपको सबसे अच्छी बात हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष से क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी वह हितग्राही जो 25,000 पटा चुका है या 50,000 का उसका रनिंग लोन चल रहा है, उसे शासन जो है 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करने के लिए अवसर देता है। वो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, उन नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारे लगभग 250 क्रेडिट कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है और हितग्राहियों के पास वो जा चुका है और उसको वो लोग एसेस करने लगे हुए हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में हमको जो लक्ष्य था शासन के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो लगभग 5,468 लोगों को हमें लाभान्वित करना था। उसमें हमारे पास में जो एप्लीकेशन आए थे वो 7,128 एप्लीकेशन आए थे। बैंकों की प्रक्रिया करने के पश्चात 7,735 लोगों को हमने इस योजना से लाभान्वित किया है। योजना 2030 तक अभी रनिंग है। दस्तावेजों में उनके पास में उनका स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, उनका स्वयं का पैन कार्ड होना चाहिए, स्वयं का बैंक का पासबुक होना चाहिए। पासबुक ज्वाइंट नहीं चलेगा कि दो फैमिली मेंबरों का एक पासबुक हो, उसका इंडिविजुअल पासबुक होना चाहिए। और किसी प्रकार से वह एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी ने लोन ले लिया हो और कभी पटाया ना हो। ऐसे हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है पूरी पारदर्शिता के साथ में हम लोगों को बैंकों तक पहुंचाएं। हमारे भारत के जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के बैंक हों, सभी बैंकों को शासन के माध्यम से टारगेट दिया जाता है। बैंकों में अधिकतम जो उनकी सीमा तय की गई है शासन द्वारा कि 15 दिवस के अंदर हितग्राही को लोन की प्रक्रिया करा दी जाती है। और आपको मैं ये बताऊं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि इस योजना में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और हमारे छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको बता दूं, 24,000 लोग पथ विक्रेताओं को हम इसमें से लाभान्वित कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि छोटे व्यवसायियों के लिए यह योजना वरदान के रूप में है। और जो लोग अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं उनको आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि वो यहां आए। मेरे जिले के सभी नगरीय निकायों में योजना लागू है और नगर निगम छिंदवाड़ा में योजना कार्यालय के माध्यम से योजना संचालित होती है। यहां आए, इस योजना का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके और वे इसके जरिए अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाकर इसे आगे बढ़ा सकें, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बैंक इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर जानकारी देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक श्री सुशांत मिश्रा ने हमसे बात की।
2: नगर निगम के द्वारा बैंकों को इसका प्रकरण वो लोग हितग्राही को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर जो भी उनसे दस्तावेज लेना होता है लेकर पीएमएस पोर्टल के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करते हैं। और इसमें जिले के हिसाब से जितने यहाँ पे हितग्राही आइडेंटिफाई होते हैं साल में, उसके हिसाब से अलग अलग बैंकों को लक्ष्य दिया जाता है। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को भी नगर निगम के द्वारा लक्ष्य प्रेषित किया जाता है, जिसमें कि वर्तमान में 15,000, 25,000 और 50,000, इनके अलग अलग लक्ष्य बैंकों को दिए जाते हैं। और जैसे ही पोर्टल पे प्रकरण आता है तो हम हितग्राही को सूचित करते हैं कि आपका प्रकरण हमें प्राप्त हुआ है, आप अपने आधार कार्ड के साथ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसके साथ बैंक में आ जाइए। फिर हम उनका सिविल जनरेट करते हैं। सिविल जनरेट करना जरूरी नहीं है, उसमें कोई मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल खाता कोई जो उनका चालू लोन है वो एक भी खाता उनका एनपीए नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कोई प्रकरण इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम उनको फिर एक डेट दे के बुलाते हैं कि इस डेट पे आप आ जाना। हम उनकी पूरी तैयारी करके रखते हैं, दस्तावेज बना के रखते हैं, साइन कराते हैं, उनका लोन खाता खोलते हैं और जिस भी कैटेगरी में वो पात्र हैं 15, 25, 50 उसके हिसाब से लोन का अकाउंट खोल के वितरण करके उनके बचत खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जिसको कि वो अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए खाते में से पैसा निकाल के यूज करते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने का सरकार के द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि बैंक से पैसा ले, रोजगार शुरू करें, उसको समय से चुकाएं और खुद की और अपने परिवार के प्रगति में बैंकों को अपना सहयोगी बनाएं।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित पथ विक्रेताओं का, स्ट्रीट वेंडर्स का उत्साह देखते ही बनता है। इस योजना से जिस तरह उनका व्यापार व्यवसाय दिनों दिन बढ़ रहा है, इससे उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित ये हितग्राही।
3: जी, क्या नाम है आपका?
4: हेमलता सूरगंज
3: से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़ी?
4: 2024 में।
3: तो आपको प्रारंभ में कितने का लोन आपका सैंक्शन हुआ था?
4: 10,000 का।
3: तो इसका उपयोग आपने किस काम में किया?
4: जनरल स्टोर पे।
3: तो उससे फायदा है आपको?
4: जी।
3: क्या लाभ मिला आपको उससे?
4: उससे भी हमारी छोटी दुकान थी, उससे लगातार त्रास होते हुए उससे फायदा होने के कारण हमने और बढ़ाया उसको, बढ़ाते हुए उसका आगे चल रहा है काम। 10,000 का लोन पूर्ण होने पर 20,000 का फिर से फार्म भरे, फिर 20,000 मिले, उससे फिर से लगातार काम चालू है। अपनी दुकान भी चलाते जा रहे, किस्त भी पड़ती जा रही। अब 20 का पूर्ण हो गया, अब मैं 50 का अप्लाई करने आई हूँ। पीएम स्वनिधि से हम योजना से बहुत फायदा मिला है सर, और बहुत अच्छी योजनाएं चल रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ लेने वाले एक और लाभार्थी हितग्राही से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार।
5: जी नमस्कार जी।
3: क्या नाम है आपका?
5: मेरा सदन कुमार मालवी।
3: अच्छा सदन जी, ये बताइए कि आपकी हम दुकान देख रहे हैं जो आप चलाते हैं, जैसे कि आप एक पथ विक्रेता हैं, ये बताइए कि कब से आपकी दुकान है?
5: ये मैं 10-12 साल करीब हो गया है। जी, जब से चला रहा हूँ
3: जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप कब जुड़े?
5: मेरे को लगभग 2021-22 से जुड़ा हूँ मैं इसमें। हालांकि मैं पहले आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, मुझे जब ये योजना का लाभ मिला, जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ काफी लाभ मिला मेरे को और आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहली बार मुझे बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए इस योजना में मिला, जिसके तहत मैंने कहना चाहिए सफलतापूर्वक कार्य किया तो उसको मैं जमा कर चुका। दूसरी बार मैंने आवेदन लगाया तो मुझे डबल मिलने का बताया गया बैंक से कि भाई एक बार आपने जमा कर दी तो दूसरी बार में आपको डबल मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा, आप ऐसी योजना का लाभ लेंगे और ऐसा क्रियान्वयन करते रहेंगे अपने बिजनेस का तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे बढ़ने का भी काफी सहयोग मिला बैंक से भी। पीएम स्वनिधि योजना जो चल रही है, ये योजना से हम लोग को कहना योजना बहुत अच्छी है सभी हितग्राहियों के लिए, आगे वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। गरीब परिस्थिति के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहिए। वैसे
0: निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केवल एक ऋण योजना ही नहीं है, बल्कि देश के रेहड़ी पटरी या पथ विक्रेताओं के सपनों को उड़ान देने का एक जरिया है। आज ये योजना हमारे पथ विक्रेता बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। जब एक छोटी पूंजी के व्यापारी का हाथ मजबूत होता है तो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है। स्वनिधि से समृद्धि की ये लहर अब हर गली हर मोड़ तक समृद्धि का संदेश पहुंचा रही है। पथ विक्रेताओं के जीवन में एक नई सुबह लेकर उनके सपनों को साकार कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो जो भी पथ विक्रेता बंधु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को गति देना चाहते हैं, वो नगर निगम के योजना कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा का था, संपादन अनिल सनोडिया का, संयोजन अल्पना गोलेंद्र का, प्रस्तुति सहयोग दीपांकर तिवारी और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की।

नगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, विषय था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, योगदान हमारे छिंदवाड़ा केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। फकीरा फिल्म का गीत सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

श्रोताओं, अभी आपने फकीरा फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में सुना। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। और आइए आप सुनते हैं तराना फिल्म का गीत। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने। रविंद्र रावल ने यह गीत लिखा है और इस गीत को संगीत से संवारा है राम लक्ष्मण ने।

शैलन सिंह के गाए तराना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है छोटे से अंतराल का।

थे। मैं डॉक्टर अजय सिंह, आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित

0: शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
3: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
2: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड आल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that Centre will continue to work with greater speed to realize your dreams.
3: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
2: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion, and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
3: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का
2: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
4: Prime Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parvat 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister visit, tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism and military strength. The Indian Air Force conducted an air show rehearsal in which pilots won the heart of people with their daring aerial performances. Rehearsals for cultural program also showcased a special Bengali presentation along with glimpse of Gujarat folk culture. On the occasion of Amrit Parva, the temple premises have been specially decorated with flowers. In addition, the statue of Hamirji Gohil on main road has been also adorned with floral decoration. At the same time, an atmosphere of enthusiasm is being seen among devotees and tourists as well. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
2: Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Union Home Minister Amit Shah has said that the Constitution and the judiciary have played a significant role in strengthening the foundations of Indian democracy. Mr. Shah was speaking in New Delhi this evening after releasing two books authored by Solicitor General Tushar Mehta. The Home Minister said the faith of the common man, the functioning of society and the character of the nation are reflected in a strong justice system. He added that India as a society has successfully maintained public trust in its institutions.
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को
5: वी हैव सर्टनली स्ट्रेंथन आवर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम 1947 अंटिल टुडे ऑल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दिस कंट्री थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन एक्सेप्टेड विदाउट शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दीज चेंजेस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द रूट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी रन वेरी डीप एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड our judiciary have made a very significant contribution to this.
1: Hamare samvidhan aur hamari nyayapalika ka bahut bada yogdan hai.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandiben Patel administered the oath of office and secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. We have more from our correspondent.
6: In the much-awaited second cabinet expansion in the state today, former state president of the BJP, Chaudhary Bhupendra Singh and Manoj Pandey, who rebelled against the Samajwadi Party and joined the BJP, have been included as cabinet ministers. While Krishna Paswan, representing the Khaga Assembly constituency of Fatehpur district, BJP MLA Kailash Singh Rajput from Tirwa seat of Kannauj, MLA Surendra Dilair from Khair Assembly seat of Aligarh, and Legislative Council member Hansraj Vishwakarma have been made ministers of state. Meanwhile, the status of ministers of state Ajit Singh Pal and Somen Tomar has been elevated in the government. Both ministers have been given independent charge. In the 403-member state assembly, the council of ministers is now 60, which is the maximum number. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
2: India and Trinidad and Tobago have signed 8 agreements in sectors including tourism, healthcare, infrastructure and Ayurveda during External Affairs Minister S. Jayashankar's two-day visit to the Caribbean nation. Ministry of External Affairs in a statement said MOUs were signed between the two sides for solarization of Trinidad and Tobago's Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, vector control, infrastructure upgrade of Nelson Island, where the Indian immigrants were stayed initially, and for setting up of an Indian chair on Ayurveda at the University of West Indies. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several others injured in a suicide attack at a police post in restive Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosion explosive laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. After the explosion, a large group of gunmen launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire. Iran has formally submitted its response to the latest U.S. proposal aimed at ending the war in West Asia. Iranian state media confirmed that the response has been handed over, stating that negotiations at this stage will focus on ending the conflict in the region. The development comes

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है। उन्होंने मग़रिबी एशिया तनाज़े के मनफी असरात को कम करने के लिए दरामदशुदा पेट्रोलियम मसनूआत के किफायती इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतालिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने दो काबीना वजीरों और चार वज़राए मुमलकत को शामिल किया है। भारत और

0: चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज्यादा खिलाफ वर्जी की, जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाकई है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वीर किया जाता है। यह अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल दो चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नवीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर आजमी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। काउंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अलमाटी में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नेहरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला आईएसएसएफ वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 1900 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आपके फरमाइशी गीतों के साथ, आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक, अंबेडकर चौक खुरई से फरमाइश की है राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लराम पूरन, रोहित छोटू और समस्त परिवार ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लम्हे फिल्म का गीत लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं शिव हरी।

अगला फरमाइशी गीत सच्चा झूठा फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा।

औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमन दीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, भिट्टा बजाज और साहिल। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। आप सभी ने फरमाइश की है बाजीगर फिल्म के गीत की। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें, नवाब आरजू की

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगली फरमाइश है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी ने फरमाइश की है काजल फिल्म के गीत की। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार साहिर और संगीतकार रवि।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, आप सभी सुनना चाहते हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं रवि।

0: अब आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी है। रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम श्री एम चंद्रकांत।
1: विद्वान डी श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
2: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन From Telangana was born into a musical lineage. He began the art of Veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9 he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani. And recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
1: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampi Holi. And on ghatam by Sri M. Chandrakant.
1: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गोला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
2: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है.
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Rudangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
4: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
3: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
4: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच

श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।